0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: जी आप देवी चित्रलेखा जी हैं महाराज जी, भगवत कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत से लोग आज इनकी कथा सुन के भजन मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं महाराज जी, आपके आशीर्वचन लेने आए हैं महाराज जी।
1: हाँ, हम सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के चरण आश्रित हैं। यंत्र में कोई पावर नहीं होता, यंत्री का सारा पावर होता है। पहले साउंड बोलता है पर साउंड नहीं, हमारे हरि गुरु हमारे यंत्री हैं, उन्हीं के सहारे से हम चल रहे हैं। वो जो बुलवा रहे हैं इसका सौभाग्य करें करावे आप सब जने बड़ाई दे। हमारी बड़ाई नहीं, हमारी योग्यता नहीं। अगर तिनके को कोई यश मिलता है तो वायु का प्रवाह काम करता है। तिनके कूड़ा कर मंदिर की चोटी में बैठा दिया, बोले वाह तिनका, तिनका नहीं तो वायु का। हमारे प्रभु का अनुग्रह, भगवद यश गायन करने का सौभाग्य दिया, भगवत नाम जपने का सौभाग्य दिया, भगवत प्रेमियों के बीच में रहने का सौभाग्य दिया, ये मेरे प्रभु की कृपा है। ऐसा उपासक को हर समय देखते रहना चाहिए। कहीं भी किंचन मात्र अपने में गुणाभिमान या मान आदि की प्राप्ति की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, हम यश कीर्ति की प्रधान बुद्धि लेकर के यश गाते हैं भगवान का, और यश चाहते हैं अपना, सम्मान चाहते हैं अपना, तो मार्ग बदल गया। और अगर हम प्रभु का यश प्रभु के प्रेम के लिए गाए तो हमारा यश तो त्रिभुवन में हो जाएगा, मृत्यु लोक की क्या बात है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। उनके प्रीतम का जस गाओगे तो श्री जी आपको दुलार करेंगे। अच्छा, प्रीतम के यश गाने के लिए देखो, हमारा तुम्हारा शरीर स्त्री पुरुष का हो सकता है, लेकिन हम सब भगवद अंश है, हम ना स्त्री है ना पुरुष है, हम प्रभु के जन है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने प्रीतम का यश गाना, प्रीतम के गुणगान करके खुद मस्त रहना और जो सानिध्य में आ जाए उसको मस्त रखना, पर उसमें हम कहीं नहीं, ये सब मेरे प्रीतम का विधान है, हम कहीं नहीं। अगर जहां हम है तो वहां फिर गिरना है, जहां प्रीतम है तो वहां गोद में हम है, फिर कहीं कोई त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। बस ध्यान देना है कि ये जो संस्कृति का मूल चक्र चल रहा है त्रिगुणात्मिका माया का, ये अहम से चल रहा है, जो अहम है देहाभिमान इसी से चल रहा है, बस ये ना रहने पावे, इसकी धज्जियां उड़ा दिया। तृणादपि सुनी चेन तरूर सुना मानिना मान देना कीर्तने या सदा। वास्तविक ध्यान से देखो तो कुछ अपना पावर ही नहीं है। क्या पावर है, जब हम एक श्वास स्वेच्छा से नहीं ले सकते, एक रोम भी हम स्थित नहीं कर सकते, तो हम किसी को भगवत मार्ग में कैसे लगा पाएंगे। मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठ करके अपना यश विस्तार कर रहे हैं, मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठकर अपने ही स्वरूप को प्रभावित करके अपने रंग में रंग रहे हैं। ये केवल यंत्र हैं, यंत्री श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा संचलित हो रहा है। अब वो जैसे चाहे वैसे बर्ताव, बस सदैव ये ध्यान रखें तो फिर कहीं कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। नहीं तो प्रवचन करना, भगवद उपदेश करना, ये बहुत खतरे से खेलना है, इसे आप बहुत हल्के में ना लें, बहुत बड़े खतरे से खेलना है, क्योंकि इसमें भारी विष अमृत बनकर सामने आता है और हम लोग उसको प्यार से पी जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, सम्मान क्या है, घोर गरल। जब हम भगवत यश गाते हैं तो भगवत संबंध से ये सब भगवत स्वरूप जन सम्मान देते हैं, जय बोलते हैं, हमारे सामने झुकते हैं, तो हमें गर्व आता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। ये हम क्या करते हैं, विष को पी, वो विष की सीवी पी सकता है दूसरा नहीं, विष को पिया पूरी नस नाड़ियों में फैल गया, अब रस नहीं रह गया, अब केवल दम्भ रह गया, नाटक रह गया, जीवन श्री कृष्ण से बिलग हो जाता है, सच्चिदानंद मार्ग से भ्रमित हो जाता है। इसीलिए ये प्रवचन करना, उपदेश करना, भगवत कथा करना यंत्रवत होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, हमारे प्रभु बुलवा रहे हैं, हमारे प्रभु करवा रहे हैं, सम्मान मेरे प्रभु का हो रहा है, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जानता है। अगर हम प्रभु के ना होते तो कोई हमें जानता क्या, कोई हमें मानता क्या, तो किसको जानना और मानना हो रहा, मेरे प्रभु को ही ना, तो उसका आरोप हम अपने देहाभिमान में ना करें, हमारे प्रभु का ही। और ये गुरु प्रदत्त है, अभी हटवा लें और पैंट शर्ट पहन ले तो तुम राधे राधे भी नहीं बोलोगे हमसे, तो किसको प्रणाम किया जा रहा है? ये गुरु जी का है और मेरा थोड़ी है। अंदर से जो बात आ रही है वो गुरु कृपा से साधन, वो गुरु कृपा से अनुभव, वो गुरु कृपा के से प्रेरणा से अपना कहीं अस्तित्व नहीं है। उपासक जो भगवत यश गाता उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। सम्मान रूपी विष उसको पीने के लिए सहज मिलता है, वो ऐसी मीठी छुरी है कि हम अपने हाथ से अपना गला काट लेते हैं। जहां सम्मान को स्वीकार किया मार्ग बदल गया, वो जान नहीं पाएगा ये मार्ग ऐसे नहीं, माया ऐसे ठग थोड़ी है कि वो ठग बन करके आवे। अगर ले जाती है तब तब पता चलता है अरे हम ठग गए क्या। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, खुली घूंघट काढ़ के नहीं, रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, बस बचा वही मामे वे प्रपद्यंते माया मेताम, बस श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण प्रभु के शिवा। ये सम्मान से बचने की आवश्यकता है। जब कोई मीठा बोलता है ना बड़े भजन आनंदी संत, ऐसा लगता है कि ये जहर है, ये जहर पी रहे हैं सब बिगड़ जाएगा। अरे यहां तक भावुकता है ना, हमारे ठाकुर जी है ना सबके अंदर, बोलो अरे ये तो भगवान है, अवतार है, हम मान लिए हमने कि भगवान के अवतार। जहां जहां हमें त्रणादपि सुनी चेल वहां गड़बड़ गड़बड़ सब गड़बड़। इसीलिए सदैव साधु संग के द्वारा अपने मन को अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करता रहे। अर्पित हुई बुद्धि मय मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है निवशस्य मई एव अति ऊर्धम न संशया, निरंतर मन बुद्धि को प्रभु में। ये बहुत बड़ा माया का जाल है, मान सम्मान प्रशंसा कीर्ति भीड़ माया का जाल है। हम अपने यश गा रहे हैं हरि का, तुम सुन लो तुम्हारे भाग्य है, अच्छा लगे बुरा लगे तुम्हारी बुद्धि की बात है, हम अपने स्वामी के भाट हैं। सूतबंदी जन कैसे होते, स्वामी का यश गाते, हम अपने स्वामी के भाट हैं, अपने स्वामी के सेवक हैं, अपने स्वामी के सूतबंदी जन जैसे नहीं, तो हम अपने महाराज का यश गा रहे हैं लाडले लाल प्रिया का। तुम्हारा सौभाग्य सुन लो, तुम्हारा अगर भाव बनता है तो प्रणाम करो। मालिक कोई भाट को प्रणाम करता है क्या, महाराज को प्रणाम करता है। तो हमारे यहां महाराज बैठे हैं, मेरे पीछे महाराज बैठे, मेरे आया दाएं बाएं मेरे प्रभु बैठे, उन्हीं को प्रणाम, चाहे जिस दिशा से करो वो हमारे प्रीतम को ही हो रहा है प्रणाम, बस अब बाल बांका नहीं हो सकता। और जहां प्रीतम को साइड में थोड़ा सा करके सामने आए तो फिर रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया भगवती अम्बा है, प्रियाजू है, प्रभु की प्रिय पत्नी है, और तुम उसके सामने अगर बनकर आए मायापति तो फिर रौंद दिए जाओगे। कोई भी हो, बच्चा बनोगे तो अम्मा है, दुलार करेंगे खूब खूब छानो फूको, मस्त आनंद से पार हो जाओ। ये माया ये माया ये माया ये माया माया ही तो है। देखो हरि जस गा रहे, हरि नाम हरि चरणामृत हरि आनंद में, और इसी का दुरुपयोग तो फिर बांध, जहां अहम वही माया का आक्रमण, अहम शून्य पे माया का आक्रमण नहीं होता, क्योंकि माया जो है ही नहीं, ममन नहीं या मन जो जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो इतनी पावरफुल है, रौंद देगी। बस सम्मान से और लोकप्रियता, इससे दोष से बहुत बचना चाहिए। लोकप्रियता होगी क्योंकि जगत के मालिक का यश गाया जा रहा है, लोकप्रियता क्यों नहीं हो। अपनी नहीं है, आपको ये माननी अपनी नहीं है, अपने प्यारे की है। खूब मस्ती से प्रभु का जस गाओ, सबको गवाओ, नाम कीर्तन नाम महिमा गाओ। भूले हुए जन जो नाम अगर तुम्हारी प्रेरणा से 10-20 भी नाम रोज लेने लगे तो हमारा जीवन धन्य कर हो जाएगा, क्योंकि अपने स्वामी के नाम का जस गा रहे हैं, रूप गुण का। बस अहम ना आने पावे, हम उसके भोक्ता ना बन जाए। अगर ये सावधानी रहेगी, भगवान का आदेश बोधयंता परस्परम कथियंति च माम नित्यम तुष्यंति च, हम अपने मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो ऐसी भावना रखे, सदैव दैन्य रहे, और कभी भी किसी भी तरह से अधर्माचरण जीवन में प्रवेश न कर पावे, क्योंकि इसमें अधर्माचरण की भी गुंजाइश रहती है। जब बहुत यश बहुत सम्मान होता है तो हमारा मन हर्षित होता है, आनंदित नहीं होता, हर्षित होता है। हर्षित मन में विकार की संभावना होती है, और जब उदासीन मन होता है तो प्रसन्नता की तरफ बढ़ता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। हर्ष एक द्वंद है जो शोक प्रकट करता है, लेकिन प्रसन्नता यह अखंड है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो भगवत चर्चा करने वाला अपनी प्रियता को देखकर, अपने सम्मान को देखकर, अपने लाभ को देखकर हर्षित हो जाता है, उसके मन में विषय स्फुरणा जोर कसती है और वो गिर जाता है। जो इस प्रियता और सम्मान को देखकर उदासीन होकर के सोचता है कि देखो मेरे प्रभु की कृपा, मैं कितना नीच हूं पर उनकी कृपा कितनी है, ये भाव हृदय में धर के चलता है, तो उसके मन में उदासीनता रहती है। आप प्रणाम करो ना करो, गाली दो, आप जैसा, उदासीन मन भगवान की तरफ चलता है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, उदासीनता हमारा परम शांत गंभीर भगवत चिंतन परायण, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति ये सब मायाकृत है, मेरे प्रभु के, मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा काम है यश गान करना। सभा में बैठ करके सबको प्रियजन की तरह बर्ताव करें, एकांत में कभी भी किसी से ना मिले। जो संबंध हमारा जिससे है उसके अलावा एकांत अगर प्रवचन करता भगवत वार्ता करने वाले का पवित्र रहेगा तो जीवन निष्कलंक और निर्विकार होता हुआ भगवान को प्राप्त होगा। एकांत में बेहोशी ना आने पावे, जैसे सभा में सावधान ऐसे एकांत में उससे 100 गुना सावधान। अंदर की दुष्प्रवृत्ति का संग नहीं, बाहर के किसी व्यक्ति का संग नहीं। एकांत पवित्र तो जीवन निष्कलंक निर्विकार भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। भगवत यश गाने वाले को भगवत प्राप्ति करने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं, समर्थ है। महामोह का भंजन करके भगवत चरणारविंद में प्रीत पैदा करना, ये भगवत यश का प्रभाव होता है। रत्नावती जी ने और कोई साधन नहीं, केवल दासी के श्रीमुख से सुना हुआ भगवान नाम महिमा और भगवत चिंतन, महाभक्त भूप हो गई। मथुरा के ब्राह्मणियों का कोई साधन नहीं, केवल मालिनी वृंदावन की जाके भगवत यश गाती, उसी के प्रभाव से भगवत साक्षात्कार किया। केवल भगवत यश गायन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित। बस बात इतनी सावधानी, मन उदासीन रहना चाहिए, बाहर से व्यवहार एकदम सरल सहज होना चाहिए, एकांत परम पवित्र, जीवन धन्य हो जाएगा। इस सखी को चुनरी श्री जी के कुढ़ा दीजिए। अच्छा,
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170858587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765065।

पुत्र वियोग की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

रात को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
9: उत्तर बिहार का गौरव,
11: सारण प्रमंडल की शान,
9: गोपालगंज की धड़कन
11: और अपने भाषा की पहचान
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: सुनो दिल से।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, खनिज परिवहन पर जागरूकता रथ को DM ने किया रवाना। गौ संरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस। पारिवारिक विवाद में एक युवक ने की आत्महत्या। महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। प्रभावकारी कुर्की अभियान में कई अपराधियों के घर पर की गई कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों के लिए जागरूकता अभियान को लेकर जिला पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। बताया जा रहा है कि सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास व्यवस्था के संबंध में जागरूकता के लिए यह वाहन रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि अन्य राज्यों से गोपालगंज जिले में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे हुए वाहनों के लिए 10 जून 2026 से ISTP अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाना तथा अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौ संरक्षण को लेकर विशाल जुलूस निकाला और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए प्रदर्शनकारियों ने देश भर में बूचड़ खानों को बंद करने और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। जुलूस के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने SDM को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की। प्रशासन ने ज्ञापन सरकार तक भेजने का आश्वासन भी दिया है। पारिवारिक विवाद में बताया जा रहा है कि एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक हाल ही में विदेश से घर लौटा था, इसी बीच पत्नी के साथ उसका विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ ही विवाद होने पर युवक ने आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान हुसैन अंसारी के 25 वर्षीय पुत्र सलीम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सलीम सऊदी में काम करता था और करीब 2.5 साल बाद लगभग 3 दिन पहले ही घर लौटा था और इसी बीच उसका पत्नी के साथ विवाद शुरू हो गया। घटना के बाद से परिजनों में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। घटना स्थल पर FSL की टीम ने भी पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने FSL की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में मृतिका के परिजनों के द्वारा दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित और हत्या करने का आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर अब बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इसी बीच मृतिका के पति मुन्ना कुमार, पिता भूटन राम, साकिन खजहटी थाना बैकुंठपुर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर प्रभावकारी कुर्की अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार फरार चल रहे हैं, उन पर अब न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई का आदेश लेकर पुलिस कुर्की अभियान में जुट गई है। इसी कड़ी में आज भी कई वांछित आरोपियों के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के उद्देश्य से लगातार अब जल्द से जल्द कुर्की की कार्रवाई कर रही है। सिधौलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइकिल से गांजा लेकर जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक साइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई शेर टोला भोज हत्ता स्थित छठी माई स्थान के पास की। वहां गाड़ियों की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इस गांजा के तस्कर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सुरेंद्र कुमार, सुमित कुमार, ये दोनों राजा राम यादव के पुत्र हैं और शेर टोला भोज हत्ता थाना सिधवलिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके गांजा और साइकिल को जब्त किया है। एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सदर SDPO 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
13: सिधवलिया थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शेर बाजार से जो जामो की ओर रास्ता जाती है उसमें एक व्यक्ति गांजा लेके जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वाहन चेकिंग लगाया, जिसमें एक साइकिल पर सकलदेव सिंह नाम का व्यक्ति के पास से ढाई केजी का बंडल साइकिल पर रखा हुआ वो गांजा बरामद हुआ, जिससे पूछताछ करने पे उन्होंने कोई भी सही बात नहीं बताई। तत्काल उसे पूरी पुलिस गिरफ्तार किया और उसके पुनः फिर एक टीम गठित किया गया और उसके बाद वो टीम गठित होने के बाद उसके बैकवर्ड लिंकेज को हम लोग खंगाले तो सुरेंद्र यादव और सुमित यादव शेर का उसी के यहाँ फिर ये छापामारी किया गया तो उसके यहाँ से 1 केजी उसके घर से गांजा बरामद किया। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
12: मीरगंज थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम अशोक कुमार है। यह मीरगंज के बढ़िया टोला निवासी विक्रमा प्रसाद का पुत्र है। पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और विभिन्न वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक प्राथमिकी अभियुक्त बबुना शाह को गिरफ्तार किया। यह बसडीला बाजार के रामधारी शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर एक मामला दर्ज था जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर हथुआ थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के चौवर से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह युवक लापता था, पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव के कपिल देव राम के 23 वर्षीय पुत्र अनीस कुमार के शव को बंगरा गांव के चौवर से बरामद किया। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने एक भूमि फर्जीवाड़ा के मामले में बेलसड़ गांव के महेश शाह को गिरफ्तार किया। यह आरोपी शिव बच्चन का पुत्र है और फर्जी जमीन का कागज तैयार करने के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी झांझवा गांव के पास छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अजय प्रसाद बड़हरिया सिवान का रहने वाला है, दूसरा नवीन कुमार यह भी सिवान के जामो का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक ट्रैक्टर जब्त किया है और इनके पास से कुल 216 लीटर विदेशी शराब भी मिली है। इधर अंबेडकर भवन में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त और कृषि पदाधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि खरीफ मौसम में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा कृषि विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने का भी बताया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दीवार तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में घायल 50 वर्षीय हरे राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर गोपालगंज के चैन पट्टी में नेशनल हाईवे NH27 पर एक बाइक डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिसमें बाइक सवार कृष्णा गुप्ता की मौत हो गई। मृतक को चायकोट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इनके भी परिजनों में कोहराम मचा है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह के मामले में फिलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा। आज भी हुई इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से अगली डेट दे दी है। तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा है और यह मामला अभी CID को भेजा गया है और CID अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खनिज परिवहन पर जागरूकता रथ को DM ने किया रवाना। गौ संरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस। पारिवारिक विवाद में एक युवक ने की आत्महत्या। महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। प्रभावकारी कुर्की

0: गागुल बनी यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले बिना चीड़ फाड़ कोइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
11: ये है हेमू, नमक का व्यापारी, जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई। बादशाह सलामत, इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत तो इसे मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो।
12: हम एक बेहोश और अधबरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा।
11: अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खत्म करो उसे। बादशाह सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मर्तबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो।
13: राजा हेमचंद्र विक्रमजीत का अंत हुआ और पानीपत की दूसरी लड़ाई खत्म हुई। राजा हेमचंद्र विक्रमजीत कई इतिहासकारों की राय में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने वाला आखिरी हिंदू राजा था और इसकी जगह ली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। भारतवर्ष में इस बार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की महागाथा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर। भारतवर्ष में इस बार कहानी अकबर की। अकबर का जब जन्म हुआ था, तब उसके पिता हुमायूं हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। जन्म हुआ अमरकोट में एक हिंदू राजा के घर, जहां उनकी मां और कुछ लोगों को शरण मिली थी। बचपन के शुरुआती दिन कांधार में बीते, जहां अकबर के चाचा ने उसे बंधक बनाकर रखा था। अकबर महान की जब पढ़ाई की शुरुआत हुई, तो पढ़ाने वालों की ही शामत आई।

0: पढ़ाई नहीं, कबूतरबाजी पसंद थी, घुड़सवारी पसंद थी, हाथियों की लड़ाई पसंद थी। बहरहाल किसी तरह दोबारा दिल्ली पर पिता हुमायूं का कब्जा हो गया। लेकिन हुमायूं खुद को मजबूत कर पाता उससे पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया।
1: जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जब अपने पिता हुमायूं की मौत की सूचना मिली तब वो पंजाब के जिला गुरदासपुर के कलानोर में था। अकबर का सिपा सलार और अतालिक यानी गुरु बैरम खान वहां मौजूद था।

0: बादशाह सलामत को सीढ़ियों से उतरते समय सिर पर गहरी चोट लगी है। उनका बचना नामुमकिन है।
1: बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये
0: शहजादे संभालो अपने आप को, ये वक्त रोने का नहीं है, खुद को संभालने का है। और ये बात, जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए।
2: जी हुजूर।
0: सालार, शहजादे की ताजपोशी की तैयारी की जाए।
2: जो
3: अकबर को जब अपने पिता के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली तब उसकी उम्र 13 साल कुछ महीने थी। हुमायूं की असमय मौत ने हालात बदल दिए। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई, मुगल सल्तनत कुछ शहरों और फौजी कैंपों तक ही सीमित थी। किसी भी लिहाज से सल्तनत अकबर के लिए सुरक्षित नहीं थी। पंजाब में मुगल सेना ने सिकंदर सुर को हराया जरूर था, लेकिन सिकंदर सुर सक्रिय था। बिहार और आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तान आदिल शाह था, जो बनारस के पास चुनार में काबिज था। आदिल शाह खुद को शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी मानता था। बंगाल में मोहम्मद खान सुर था। उधर हुमायूं की मौत की खबर लगने के साथ 50,000 की फौज लेकर जलाल शाह सुर जौनपुर से दिल्ली पर हमले के लिए तैयार था।
4: कुछ इस हालात में भारतवर्ष के महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ताजपोशी हुई। दिन था 14 फरवरी 1556 का, समय दिन के 12 बजे। इसके लिए कलानौर में ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया।
3: बैरम खान ने हुमायूं की शाही तलवार अकबर को सौंप दी। इस ताजपोशी के बाद 13 साल के बादशाह ने अपना फरमान सुनाया। अकबर ने अपने फरमान में बैरम खान को सल्तनत का वकील मुतलक यानी राज्य के सभी राजनीतिक और आर्थिक मामलों का जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही खान खाना और सिपासलार यानी सेनापति भी बना दिया।
4: अकबर की परीक्षा की घड़ी बहुत जल्दी आ गई। अकबर ताजपोशी के बाद भी दिल्ली नहीं गया। बैरम खान ने तारदी बेग नाम के मुगल सेनापति को दिल्ली का गवर्नर बनाकर भेजा और खुद पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जालंधर में रुक गया। तभी बिहार और उत्तर प्रदेश में राज कर रहे आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू ने दिल्ली का रुख किया। खास बात, हेमू ने हारना सीखा ही नहीं था।
3: हेमू के बारे में कहते हैं कि उसने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध लड़े थे, सभी युद्ध जीते थे। वो अपने जीवन के 23वें युद्ध की तैयारी में लगा था। लेकिन 5 नवंबर 1556 को जब हेमू विक्रमाजीत और मुगल सेना के बीच पानीपत में आमना सामना हुआ, हेमू और उसके साथियों ने मुगलों को बुरी तरह से रौंदना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए बैरम खान ने लड़ाई के मैदान से पीछे हटने की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार ने मुगलों के भाग्य को बदल दिया।
4: पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और बैरम खान की फौज हार के कगार पर थी। अपने प्रिय हाथी हवाई पर सवार हेमचंद्र विक्रमजीत अपनी फौज का नेतृत्व कर रहा था। तभी एक तीर न जाने कहां से आकर हेमचंद्र की आंख में घुस गया। अबुल फजल ने कहा वो तीर नहीं था, खुदा से मिली सजा थी। तीर लगने से हेमचंद्र बेहोश हो गया। हेमचंद्र को बेहोश देखकर उसकी फौज घबरा गई। महावत ने हेमचंद्र को लड़ाई के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। हेमचंद्र विक्रमजीत को बंदी बना लिया गया।
5: ये है हेमू, नमक का व्यापारी, जिसने तैमूर के झंडे को नीचा करने की हिमाकत की, दिल्ली पे कब्जा करने की हिम्मत जुटाई।
0: बादशाह सलामत,
5: इसे मौत देकर गाजी का मर्तबा हासिल करो। मौत तो इसे मौत। बढ़ो बादशाह, बढ़ो और इसे मौत दो।
3: अबुल फजल कहता है कि बादशाह अकबर ने घायल और अधमरे हिमू को मारने से इनकार कर दिया। उसके बाद खुद बैरम खान ने उसका सिर काट दिया।
2: हम एक बेहोश और अधमरे इंसान पर तलवार नहीं उठा सकते बाबा।
5: अच्छा, ये क्या बोल रहे हो? खत्म करो इसे। बादशाह सलामत ने हेमू को मारकर गाजी का मर्तबा हासिल किया। बादशाह सलामत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
3: जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं,
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
10: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
9: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
9: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
11: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
3: कि अकबर को बड़े दिल का दिखाने के लिए अबुल फजल ने ये बातें गढ़ी, जबकि सच्चाई ये है कि अकबर ने ही हेमू के गर्दन पर पहला वार किया। बाद में बैरम खान के वार से हेमू का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद हेमू के सिर को काबुल भेजा गया और धड़ को दिल्ली।
14: एक वर्जन तो अबुल फल का है कि अकबर ने मना कर दिया, और दूसरा वर्जन बाकी सब मौर्रखों का है, जिसे मैं फरिश्ते का सही समझता हूँ। सर काटना किसी का आसान नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने जो तलवार वार किया उसमें कुछ नहीं हुआ, तो फिर बैरम खान ने बहुत ज़ोर से तलवार से उसकी गर्दन काटी।
15: उसके कई किस्से हैं। अकबर ने एक ये भी किस्सा है कि अकबर ने कहा कि, या अकबर के बिहा पर कहा कि तुम अगर मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा, तो उसने ये कहा कि मैं अगर जीत जाता इस लड़ाई में तो शायद मैं मुसलमान होने की सोच सकता था, लेकिन चूंकि मैं हार, इसलिए सोच सकता था कि मैं ईश्वर का या खुदा का या अल्लाह को शुक्रिया अदा करता मुसलमान होकर के, लेकिन चूंकि मैं हार गया हूँ इसलिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। लेकिन ये सही है कि अकबर ने उसका गला खुद नहीं काटा था।
4: हेमू के अंत को भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ये भी कहा जाने लगा है कि हेमचंद्र विक्रमजीत का अंत नहीं होता तो भारत का इतिहास भी कुछ और होता, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हेमू से ज्यादा यह अफगानों की हार थी। बहरहाल इस जीत ने मुगल सल्तनत में बैरम खान की स्थिति बहुत मजबूत कर दी।
3: बैरम खान का दबदबा 4 साल तक चला, 1556 से 1560 तक। इस बीच बैरम खान ने मुगल सल्तनत को काबुल से उत्तर प्रदेश के जौनपुर तक फैलाया, ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बैरम खान ही ज्यादातर बड़े फैसले ले रहा था। बैरम खान के रवैये की एक मिसाल इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब में देते हैं। एक बार जब अकबर ने 17 रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया। उसकी इज्जत तब बची जब माहम अंगा ने उसे खर्च के लिए पैसे दिए। माहम अंगा ने अकबर को बचपन में अपना दूध पिलाया था और महल में उसका बड़ा रसूख था। एक तरह से बैरम खान के विरोधी खेमे का नेतृत्व वही कर रही थी। दूसरी तरफ अकबर अब 13 साल का बादशाह नहीं था, वो बड़ा हो चुका था।
15: अकबर अब बड़ा हो गया था, 1556 में वो गद्दी पर आया था और 1560 तक चार साल में अब बड़ा हो, 17-18 साल का हो गया था। तो अभी भी वो उसको बच्चा ही समझता रहा, अभी भी वो उसको बच्चों की तरह ही, उस पर हुक्म तो नहीं चलाता था लेकिन उसको ऐसे ही ट्रीट करता रहा। लेकिन अकबर ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब मैं वाकई बादशाह बनना चाहता हूँ।
4: महल में खींचतान थी, अकबर उससे परेशान रहता था और वो इनसे बचने के लिए शिकार के बहाने बाहर निकल जाता था, लेकिन बैरम खान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से भी वो बचता रहा। बैरम खान के कत्ल का प्रस्ताव भी उसे दिया गया लेकिन अकबर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
16: हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं, बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन बैरम खान के कत्ल का हुक्म हम नहीं दे सकते। जिस इंसान ने हमारी और हमारे वालिद की हिफाजत की हो उसका कत्ल करवाना भरोसे का कत्ल करना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी के भरोसे के लायक नहीं रह जाएंगे।
3: अकबर बैरम खान को अपनी सल्तनत के वकील या प्रधानमंत्री पद से हटा देना तो चाहता था लेकिन बैरम खान की शख्सियत और एहसान उसे रोक रही थी। ऐसा बहुत दिन तक नहीं चला। शिकार के बहाने अकबर आगरा से रवाना हुआ, सिकंदरा नाम की जगह पर रुका और फिर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर बैरम खान को हटाने का फरमान जारी कर दिया। बैरम खान ने मुलाकात की इजाजत मांगी लेकिन अकबर नहीं माना।
16: मेरे खान बाबा, आप हमारी मोहब्बत और नेक तमन्नाओं की इस पैगाम को पढ़ें और जान लें कि मौजूदा हालात को देखकर ही हमने दिल्ली में पड़ाव डाला है। जब हमें पता चला कि आप हमसे मिलना चाहते हैं तब हमने ही ये कहलवाया कि आपको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपसे काफी तकलीफ पाई है, आपको फिर भी भरोसा देने के लिए मैंने लिखा है कि बाप बेटे के बीच भी झगड़ा हो सकता है, गैर इत्तेफाकी हो सकती है लेकिन वो कभी अलग नहीं हो सकते। आप आज भी मेरे खान बाबा ही हैं।
3: बैरम खान खत मिलने के बाद आगरा छोड़कर हज के लिए रवाना हो गया।
4: अकबर की शाही फौज बैरम खान के खिलाफ मार्च कर रही थी। बैरम खान के साथियों की संख्या कम थी लेकिन अकबर की सेना उसे हरा नहीं पाई। अंत में अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से परेशान होकर खुद बैरम खान ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया।

पचीबाड़ा की लड़ाई याद है आपको खान बाबा? ये वही तलवार है जिसने मेरे वालिद जन्नत आशियानी नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह की हिफाजत की थी। ये वही तलवार है जिसने पानीपत में हिमू को खत्म कर दिया था और इस तलवार को खुद अपने पास रखने वाला आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता खान बाबा।

0: अकबर ने बैरम खान को कालपी या चंदेरी की सूबेदारी देने को कहा, लेकिन बैरम खान ने कोई ओहदा लेने से इनकार कर मक्का जाने की बात कही। लेकिन बैरम खान मक्का न पहुंच पाया।
1: बैरम का अंत हो गया, वो फिर गया हज पर, हज में फिर वहाँ पाटन है जगह गुजरात में, वहाँ जाते ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया, तो इस तरह से उसका बहुत ट्रेजिक अंत हुआ।
0: बैरम खान का दौर खत्म हुआ, लेकिन मुगल दरबार में खींचतान खत्म नहीं हुई, उल्टे बढ़ गए। शासन प्रशासन पर माहम अंगा का प्रभाव काफी बढ़ गया। मुनीम खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। मुनीम खान पर माहम अंगा का खास प्रभाव था। इसी दौर में राज्य विस्तार का नया दौर भी शुरू हुआ। माहम अंगा के बेटे अदम खान के नेतृत्व में मालवा पर हमला किया गया। यहाँ बाज बहादुर का शासन था।
2: मुगल सेनापति अदम खान ने क्रूरता की हदें पार कर दी। राजधानी सारंगपुर में कत्लेआम मचाया गया, लूटा गया।
0: जीत के बाद अकबर ने मालवा कूच करने का फैसला किया। कत्लेआम करने वालों को सजा देने नहीं, बल्कि लूट पर कब्जा करने। उस लूट में हरम की लड़कियां भी थी।
3: अदम खान ने वहां जाके जब बाज बहादुर को हरा लिया था तो बहुत बुरी तरह से ये लूटमार कर रहे थे। उसके जो हरम में वो तीन कनकुबाइंस थी उनको भी सबको कब्जे में कर लिया था। और बहुत जैसी उनको खबर मिली वैसे ही बगैर किसी को बताए हुए फॉर्स मार्च से वहाँ पहुँचे, और पहले तो उससे सारी बूटी रखवाई, उसके बाद फिर औरतों को छोड़ने को कहा, दो को उसने नहीं छोड़ा। फिर महामानगा इतनी देर में पहुँच गई, उन्होंने उसे खामोशी से मरवा दिया।
0: साफ था कि अदहम खान बतौर बादशाह अकबर को महत्व देने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने 1561 के अंत तक अपने प्रभाव का विस्तार तेजी से करना शुरू कर दिया। उसने मुनीम खान को हटाकर शमसुद्दीन अतका खान को वजीर बनाया। इतना ही नहीं, अदहम खान से मालवा की सूबेदारी वापस ले ली। लेकिन अदहम खान कहां मानने वाला था? अदहम खान और उसके साथियों ने शमसुद्दीन अतका को ही मार डाला।
4: क्यों मारा तुमने इसको?
5: ये आपका वफादार नहीं?
0: अकबर ने अधम खान को उसी वक्त छत से नीचे फेंकने का हुक्म दिया। नौकरों ने नरमी दिखाई तो दोबारा नीचे फेंकने का हुक्म दिया।
4: तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा?

0: अकबरनामा की यह तस्वीर उसी घटना का वर्णन करती है। इस घटना के कुछ दिन बाद माहम अंगा की मौत हो गई।
1: अधम खान और माहम अंगा के अंत के साथ अकबर की जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ और कई मायनों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दरअसल अधम खान के अंत से 4 महीने पहले अकबर जियारत के लिए अजमेर शरीफ गया। वापसी में दौसा के पास उसकी मुलाकात आमेर के राजा भारमल से हुई और यहीं से भारत के महत्वपूर्ण शासक वर्ग राजपूतों के साथ अकबर के संबंध का नया दौर शुरू हुआ।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: चक्रवर्ती की सेवा में निवेदन है।
10: बताइए कछवाहराज, क्या चाहते हैं आप?
9: हमारी इच्छा है कि आप हमारे कछवा वंश के साथ संबंध बनाएं।
10: वो कैसे?
9: आप हमारी बड़ी बेटी के साथ सास सम्मान विवाह करें।

0: जब राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर को दिया तब उसकी हालत बहुत खराब थी। मेवात के सूबेदार ने आमेर पर हमला करके भारमल को एक बड़ी धनराशि देने को बाध्य कर दिया। उसने भारमल के बेटे और दो भतीजों को बंधक भी रखा हुआ था। भारमल के पास अकबर जैसे बड़े बादशाह की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। बहरहाल अजमेर से लौटते समय सांभर में आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर ने विवाह किया। राजा भारमल की बेटी का नाम राजकुमारी हीरा कुंवरी उर्फ हरखाबाई माना गया है। हरखाबाई के बाद भी अकबर ने कई और राजपूत राजकुमारियों से शादी की। हरखाबाई से शादी के बाद अकबर की राजनीतिक दिशा के साथ साथ उसकी सामाजिक सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया।
1: अकबर ने एक नई नीति, एक नया आधार जिसके मैं जिक्र कर रहा था बनाया कि यहाँ के जो राजवंश हैं, जो देशी राजवंश हैं, उनके साथ 300 साल से हम लड़ते आए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना हम उनको ख़त्म कर सके ना वो हमें ख़त्म कर सके, तो इसलिए इनको अपने साथ क्यों ना मिलाया जाए, यू नो, इनको भी शासन में, राज्य में, साम्राज्य में जगह दी जाए।
2: यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी है कि फिल्मों के जरिए, कुछ कहानियों के जरिए ये बात सामने आती है कि अकबर ने किसी जोधा बाई से शादी की थी, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बनावटी बातें हैं, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।
1: क्योंकि ये ना जोधाबाई वो थी जो जोधपुर के घराने से आती हैं, और जोधपुर के घराने से अकबर के हरम में कोई नहीं थी, तो ये जोधाबाई अकबर की कोई पत्नी नहीं थी, बल्कि जहांगीर की पत्नी थी, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। लेकिन ये और अकबर के ज़माने में और अकबर के बाद के 17वीं शताब्दी में इनका कोई जिक्र है नहीं। ये शायद 18वीं शताब्दी से या 18वीं शताब्दी के बाद के हिस्से से ये एक आम जनता में एक शुरू हो गई कथा कि अकबर की सबसे चहेती पत्नी थी जोधाबाई और उसका बेटा जहांगीर था, वगैरह वगैरह।
0: अकबर एक तरफ गहरे राजनीतिक फैसले करने में सक्षम था, वहीं कभी गुस्से में तो कभी बेवकूफी में अपनी जान को भी दांव पर लगा देता था। 1564 में दिल्ली में लड़कियों और विवाहित औरतों के पीछे अकबर इस कदर दीवाना हो गया कि उस पर जानलेवा हमला हो गया। अकबरनामा में ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। 1573 में तो उसने राजपूतों की वीरता की नकल में अपनी जान जोखिम में डाल दी। बात तब की है जब वो गुजरात अभियान में सूरत में था और कुछ राजपूत राजाओं के साथ शराब पी रहा था। वहां मानसिंह भी मौजूद था। बातचीत घूम फिर कर राजपूतों की वीरता पर होने लगी।
3: राजपूत अपने जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इतिहास इस बात का गवाह है।
4: बादशाह सलामत, जान लेने और देने के तरीके तो कोई हमसे सीखे। दो धारी तलवार लेकर दो राजपूत एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और तलवार एक दूसरे के सीने के आर पार कर देते हैं।

0: अकबर की इस हरकत को देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। कोई एक लफ्ज नहीं बोला।
1: जान देना क्या होता है ये हम आपको बताते हैं।
0: तभी मान सिंह उठा और उसने तलवार नीचे गिरा दी।
1: हमारी हिम्मत कैसे हुई?
0: अकबर अपनी वीरता को दिखाने के लिए इतना आतुर था कि उसने इस बात की परवाह ही नहीं की कि अगर मान सिंह ने तलवार नहीं हटाई होती तो उसकी जान चली जाती। इतना ही नहीं, अकबर ने गुस्से में मान सिंह को जमीन पर पटक कर मारना शुरू कर दिया। मान सिंह को पिटते देख वहां मौजूद दूसरे लोगों ने मान सिंह की जान बचाई।
2: इन घटनाओं से साफ है कि अकबर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े शासकों सम्राटों में से एक जरूर था, लेकिन फिर भी इंसान था, गलतियां करता था और उन्हें सुधारने की कोशिशें भी करता था। बहरहाल अकबर को जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सम्राट अशोक के बाद वो पहला शासक था जिसने धर्म में सुधार की कोशिशें की, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया।
0: कहा जाता है कि जो राजपूत राजकुमारियां अकबर के महल में आईं, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। महल में वो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ करती थी। तब के मौलवी और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने तो लिखा है कि वो अपनी राजपूत पत्नियों के साथ हवन किया करता था, यानी यज्ञ में हिस्सा लेता था। देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को खुद से जोड़ने के लिए इसी दौर में अकबर ने दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला था हिंदुओं के तीर्थ पर लगने वाले टैक्स को हटा लिया गया।
3: अकबर साहब मथुरा गए थे वो खेलने, शिकार खेलने, और काफी रुक के वहाँ शिकार खेला। ये पैदल मथुरा से आगरे, उस वक्त आगरे में था कोर्ट, पैदल पहुँच गए और वहाँ जाके जो इन्हें पहला ऑर्डर निकाला है, अबुल फजल लिखता है पहुँचते के साथ ही, वो ये था कि पिलग्रिमेज टैक्स माँ। तो इन्हीं ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गरीब से गरीब आने वाले लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं, जो बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, चाहे ये उस श्रद्धा में यकीन रखते हों चाहे नहीं, मगर वो तो आ रहे हैं और उनके ऊपर एक टैक्स लग रहा है। तो इन्होंने उसको फौरन माफ़ कर दिया। तो ये इनका इंसानों के साथ, आदमियों के साथ रहने और उनकी परेशानियाँ समझने का एक था। इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिसी नहीं थी।
0: अकबर का इसी तरह का दूसरा फैसला था जजिया हटाने का। जजिया वो टैक्स था जो सभी व्यस्क हिंदुओं को उनकी हैसियत के हिसाब से देना पड़ता था। ये टैक्स एक तरह से पराजित हिंदू जनता को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता था। इस टैक्स से मुगल सल्तनत को अच्छी आमदनी होती थी। अबुल फजल ने लिखा है 1564 में यह फैसला अज्ञानी उलमाओं की भारी खुसफुसाहट के बावजूद लिया गया है, जो कि हिंदू सल्तनत के लिए उतने ही समर्पित थे।
2: यह अकबर महान की जिंदगी का वो दौर था जब कहते हैं अकबर कट्टर सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव में था। उनमें से दो मुख्य थे, शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। अब्दुल नबी तो इतना कट्टर था कि उसने अकबर को एक बार केसरिया रंग का कपड़ा पहनने के लिए भरे दरबार में डांटा ही नहीं बल्कि डंडे से मारने तक की बात कही थी। खैर, ये पहला दौर था, जबकि दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब उसने इबादत खाना बनवाया, जहां वो धर्म के जानकारों के बीच बहस को सुनता था और धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ों को बेमानी समझने लगा था।
0: इबादत खाना में होने वाली बहस से अकबर बहुत परेशान हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े में उसे धार्मिक गुरुओं के निजी स्वार्थ को समझने में मदद की। 1581-82 में तो उसने इबादत खाना बंद ही करवा दिया।
4: अबुल, काश कि हमने मौलाना और उलमाओं के बीच की ये अलग अलग राय नहीं सुनी होती। काश कि हमने कुरान शरीफ की आयत और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े वाकयात के अलग अलग मायने नहीं सुने होते। काश।
0: इबादत खाना की बहस से अकबर परेशान तो था, लेकिन उसके धर्म को लेकर समझ बिल्कुल साफ हो गई थी। वो समझ गया था कि सभी धर्मों में सच्चाई के कुछ तत्व मौजूद हैं और सभी धर्म आखिरकार परम सत्ता तक ले जा सकते हैं। यही आगे चलकर सुलह कुल यानी सभी धर्मों के बीच शांति की अकबर की नीति का आधार बना। सुलह कुल ही अकबर को अकबर महान बनाता है।
5: भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ तो एक तरफ तो ईश्वर की, अल्लाह की एक नई अवधारणा थी, एक ईश्वर है और उसकी इबादत का एक तरीका है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में कई ईश्वर हैं, करोड़ों ईश्वर हैं, करोड़ों देवी देवता हैं। ईश्वर तो एक है लेकिन कई करोड़ों देवी देवता हैं, उनके पूजा के करोड़ों तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो इन दोनों अवधारणाओं में, दोनों परिकल्पनाओं में आपस में सामंजस्य भी हुआ, आपस में टकराव भी हुआ। तो इस टकराव की परिप्रेक्ष्य में एक नई अवधारणा उभरी कि हमें अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमारे लिए एक ही ईश्वर है, वो अल्लाह भी है और हिंदुओं का ईश्वर भी है। तो यहाँ से अवधारणा बनती है उसकी सुलह कुल की।
2: 1580 में कुछ मुगल अहदेदारों ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और छोटे भाई मिर्जा हाकिम को बादशाह घोषित कर दिया। इस बगावत को कुछ उलेमाओं ने अपना समर्थन दिया। बहरहाल अकबर ने बगावत को शांत कर दिया, लेकिन अकबर रुका नहीं।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-74-86-164।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: एक बादशाह की सल्तनत के लिए ये बहुत बुरी बात है कि उसके लोग बटे हों, एक दूसरे के खिलाफ। हमारी सल्तनत में हिंदू हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, ये सब लोग सिर्फ अलग अलग सोच नहीं रखते। अगर कभी कभी एक दूसरे के साथ दुश्मनी से पेश भी आते हैं, हमें इन सबको एक करना होगा, एक। लेकिन इस तरीके से कि ये सब एक भी हो और सब भी। हर मजहब में अच्छाई होती है, हर मजहब। हमें उस अच्छाई को बढ़ावा देना है, इसी में खुदा की इज्जत है और सल्तनत इसी से बची रहेगी और लोगों में अमन होगा। आप जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसकी राय दें, और जब तक वो होता नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा।
0: अकबर की नीतियों को आगे चलकर दीन इलाही का नाम दिया गया। कहीं कहीं तौहीद इलाही का जिक्र आता है, लेकिन खास बात यह है कि अकबर ने खुद कभी भी यह नहीं कहा कि वो किसी नए धर्म या दीन की शुरुआत कर रहा है।
5: दीन इलाही इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक इतिहासकार ने किया, अकबर के जमाने में, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बाकी इसका औपचारिक जो नाम है वो तौहीद इलाही है। एक राजनीतिक विचारधारा की स्थापना की इस तौहीद इलाही के जरिए कि आपको मेरी तरफ वफादार होना चाहिए। आपकी धार्मिक आस्था क्या है, आपकी वैचारिक आस्था क्या है, किस कास्ट से हैं, किस जाति से हैं, इस सब से ऊपर उठ करके बादशाह की तरफ आपकी वफादारी होनी चाहिए।
0: अकबर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसने दीन इलाही नाम के धर्म की शुरुआत की। इतिहासकार इसे भी ख्याली और बेबुनियादी मानते हैं।
3: ना दीन इलाही ना तौहीद इलाही किसी मुगल कंटेम्प्रेरी सोर्स में ये आपको लफ्ज नहीं मिलेंगे। तो ये जैसे सूफी ऑर्डर्स होते हैं उसी तरह की एक चीज़ थी कि अकबर को आप अपना पीर मुर्शिद माने, अपना गुरु माने।
0: अकबर की इन उदारवादी नीतियों का विरोध हुआ। अकबर का कहना था कि मौलवी उलमाओं की अंध नकल की जगह अकल का इस्तेमाल होना चाहिए। 1591 के आसपास अकबर के बेटे मुराद ने उसे चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा कि अगर कैंप में कोई शख्स धर्म के बड़े जानकारों की तरह नमाज या पूजा पाठ करता हुआ पाया गया तो उसे क्या रोका जाना चाहिए। अकबर ने जवाब में कहा कि उस सैनिक को उसके अधिकारी नसीहत दें, समझाएं, जिससे कि वो राह अक्ल पर चल सके। यहीं अकबर ने ये साफ किया कि उस व्यक्ति को जबरन पूजा पाठ से कतई न रोका जाए, क्योंकि ऐसा करना सुलह कुल के खिलाफ होगा। इन बातों की वजह से अकबर के विरोधियों ने उस पर इस्लाम छोड़ने तक का आरोप लगाया।
15: इस्लाम छोड़ने या न छोड़ने का सवाल तो किसी ने नहीं उठाया, सिवाय बदायूनी ने, वो भी दूसरे तरीके से। इस तरह नहीं कभी बदायूं ने कहा कि इस्लाम छोड़ दिया है अकबर ने।
16: श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और रेनू को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
17: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
18: Namaskar.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकीप और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नवविकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
8: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
7: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
9: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
7: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
10: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B

0: डांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज डांबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे

0: हमारे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊँ, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894-18744।
11: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
12: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
13: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
12: तो क्या हुआ?
11: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kiwe Rawangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, will subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: Nanna munna lahi hun, desh ka sipahi hun.
2: Ruko ruko beta. अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94353
10: और 90971-6602।

0: अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी।
1: ग्रामीण विकास विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है, इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा यह स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर लागू होगी। अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में रबी फसल 2026-27 सत्र के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: इधर कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मापी के शुल्क को 2 गुना कर दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित रैयती भूमि की मापी के लिए प्रति खेसरा न्यूनतम 2,000 रूपए और अधिकतम 8,000 रूपए लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा न्यूनतम 1,000 रूपए और अधिकतम 4,000 रूपए लगेंगे। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया की रूपरेखा विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। गौरतलब है कि प्रदेश के 211 डिग्री महाविद्यालयों में इस वर्ष 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में भी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा में दलों के संख्या बल के अनुसार सभी प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 11 जून को नाम वापसी के दिन सभी प्रत्याशियों की जीत की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वर्तमान विधान परिषद चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए 25-25 मत की आवश्यकता है। एनडीए के पास 201 मत है जिससे उनके 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, जबकि महागठबंधन के पास 36 मत उपलब्ध हैं जिससे 1 सीट पर उसकी जीत निश्चित है। एक अन्य सीट पर उपचुनाव होना है जिसमें एनडीए की जीत तय है। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। राज्य में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश, सीएल के साथ साथ महिलाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश, एसएल के आवेदन पर अधिकारी एक दिन में निर्णय लेंगे। अन्य अवकाशों के आवेदन पर 7 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कटिहार सदर अस्पताल में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सदर अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में डीएनबी की 2 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 2 मेडिकल स्नातक के छात्र यहां दाखिला लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक बनने की दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। श्री सिंह ने बताया कि दिसंबर माह से इस पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मन खनुजा ने बताया कि वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि संशोधित सीमा लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्री भागवत ने बौद्धिक सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीवान और गोपालगंज जिले के 118 प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें सेवा से हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है। इन शिक्षकों में सीवान के 83 और गोपालगंज के 35 शिक्षक शामिल हैं। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों के नियोजन को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रहता हूं।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। अधिकतर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.7, कैमूर के भभुआ का 42.4, गया जी का 41.4 और पटना का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
3: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: सीतामढ़ी जिले के रेवासी पंचायत के धनुषी टोला में कल देर रात एक पीपल का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कटिहार जिले के कुर्सिला थाना क्षेत्र में कटरिया पिकेट के पास पुलिस ने छापेमारी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग तथा कालाबाजारी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के मामले में 14 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि 26 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली स्थित एचपीसीएल बायोफ्यूएल लिमिटेड इकाई के आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषद की ओर से गन्ना ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पटना जिले की एक अदालत ने डकैती के मामले में 6 दोषियों को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की खबर है, विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाने पर राजद नेता शिवचंदर ने पार्टी पद से दिया इस्तीफा। दैनिक जागरण नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, इस बार वायुसेना और डाक विभाग पहुंचाएंगे प्रश्न पत्र। दैनिक भास्कर की खास खबर है, सीबीएसई आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में 4 छात्र कॉपी जचवा रहे। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, तीसरे दिन ही अफगानिस्तान का सरेंडर, पारी और 300 रन से गंवाया मैच। आज अखबार की सुर्खी है, सासा मूसा शुगर मिल फिर से चालू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 से 7 तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: गणेश कुमार
1: जी। कहाँ से?
2: नारायण से।
1: कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ।
1: और सब ठीक ठाक?
2: अभी अभी जो बात कर रहे थे ना मेरे बहन जी करिश्मा।
1: अच्छा जी।
2: बताइए।
1: और सब बढ़िया है?
2: धूप निकला है उधर?
1: जी धूप है लेकिन मतलब उतना नहीं लग रहा है, बढ़िया है मौसम।
2: हवा भी है
1: जी।
2: तो मैं गाना सुनना है।
1: बताएं क्या फरमाइश है?
2: नीलकमल सिंह का बेवफाई सॉन्ग बजा दीजिए।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
2: तो सबसे पहले तो सोनी मैम को
1: जी,
2: आपको और करिश्मा को।
1: ओके,
2: पूरा रेडियो रेंज में।
1: फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्रामदेव चोपड़ा, जिला कुशवाहा से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम। आप कौन मैम बोल रहे?
0: नहीं, मेरा नाम भारती है।
1: जी जी मैं बहुत बड़ा लेक्चरर हूँ आपका।
0: जी
1: और सब बताइए, गोपालगंज में कैसा मौसम बना है आज?
0: गोपालगंज में मौसम अभी बढ़िया है।
1: चलिए मैम अच्छा है।
0: और उधर का मौसम कैसा है?
1: हमारे अभी आपके छोटे जिले से ही है तो अच्छा ही है, वैसा ही मौसम इधर भी है, कुशीनगर से हम भी हैं।
0: अच्छा जी, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
1: मुझे गाना सुना दीजिए, मुझे इश्क है तुम इससे मेरी जान जिंदगानी, यही गाना सुना दीजिए।
0: ओके, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: डेडिकेट है आपको और पूरे रिमझिम परिवार को और जितने भी श्रोता है रिमझिम परिवार को, सुनने वाले सभी के लिए।
0: ओके चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034-48652 पे।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
15: हम छागर से बोलते हैं, रामा जी प्रसाद।
14: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
15: हम ठीक है, आज हवा बहुत बहुत आ
14: मौसम बढ़िया है।
15: हाँ,
14: बताइए कौन सा गाना सुनना है?
15: प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा।
14: अच्छा ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
15: नमस्ते।
14: नमस्ते।

0: हेलो, बहुत आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में जी, क्या नाम है आपका?
1: मिसबा।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: सागर से।
0: अच्छा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसे?
0: मैं भी ठीक हूँ जी। बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: तुमसे बेहतर कौन है
0: सॉन्ग, और ये गाना किसी को सुनाना चाहती हैं?
1: हाँ
0: जी बताएं।
1: मेरे हस्बैंड।
0: अच्छा जी, चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 30 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम में।
12: नमस्ते दीदी
11: जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
12: कविता
11: जी। कहाँ से हैं आप?
12: दिल्ली से
11: जी। कैसी हैं?
12: हमारे पति देव फोन ना चले रही है
11: जी।
12: उमा शंकर मिश्रा
11: जी। जी किए थे आप? ठीक है ना?
12: हाँ
11: चलिए बताइए,
12: सुना दीजिए।
11: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
12: अपने पसंद के सुना दीजिए।
11: मेरी पसंद का? आप अपनी पसंद का नहीं सुनिएगा?
12: नहीं, अपनी पसंद से सुना
11: जी। बताइए भोजपुरी सुनना चाहेंगी या फिर हिंदी?
12: खेसारी लाल के।
11: ओके, और ये गाना आप किस किस को डेडिकेट करना चाहती हैं?
12: हमारे पति देव है, मेरा देवर है, मेरा लड़का फड़का है।
11: अच्छा जी।
12: हाँ
11: ओके,
12: ओके
11: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: ठीक है जी।

0: हेलो अपना रेडियो रेमिचे मपाई
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमिचे के कार्यक्रम हेलो में।
0: आप गोपालगंज तो बोल दो भाई। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल भाई सोनी बेटा,
1: सत श्री अकाल
0: भाई। पिंड माउड़कोट जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहा भाई।
1: जी कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक बेटा, तुसी दसो भाई, छोटी सेहत भाई, घर परिवार कैसे सुखा?
1: क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश बेटा, एक पुरानी फिल्म है
1: जी,
0: वो हैगा जी फिल्म, एक मिनट दसता हूँ, भूल गया बेटा। अखियों के चरोखे में टाइटल सॉन्ग है बेटा, अखियों के चरोखे में, एक ही सुना दो भाई।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: ए बेटा, मेरे मानयोग बड़े भाई है सुखपाल सिंह, नेशनल कॉलोनी बठिंडा, जथेदार बापू प्यारा सिंह जी,
1: जी
0: अपने मलकीत सिंह घड़ीसाज, एक मेरे बड़े भाई है प्रगट सिंह ढिल्लों साहब, सोनू सत श्री अकाल बुलाते हैं बेटा।
1: जी, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल भाई, बाबा करे सत श्री अकाल भाई।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
11: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
14: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो,
17: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: गुड मॉर्निंग मैम।
17: गुड मॉर्निंग,
16: आपका क्या नाम हुआ मैम?
17: मेरा नाम भारती है।
16: जी जी जी।
17: और आपका?
16: थैंक यू मैम, मैं शंकर प्रसाद गुप्ता गया जी से बोल रहा हूँ मैम।
17: जी
16: जी,
17: कैसे हैं आप?
16: बढ़िया है, आपके आशीर्वाद है। मैम एक गाना सुन रहा था।
17: जी बताएं, कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
16: ये हम आपके है कौन में कंताश्रिय मैम, वो सॉन्ग सुनना था मैम।
17: हाँ हाँ,
16: वो सुनना था मैम।
17: ओके, और ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
16: पहले तो मैम आपको सुनाएंगे, सबसे पहले आप जुड़ेंगे।
17: हाँ जी,
16: और उसके बाद हमारी बिटिया है, नाती है, पोता है, बहू है, बेटे है, सबको सुनाएंगे मैम और सारे लिस्नर को सुनाएंगे मैम।
17: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
16: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एलपी से। बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: जी
0: जी मैम, तो आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म राजा हिंदुस्तानी का, और गाने का बोल है तेरे इश्क में नाचेंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंजिंग दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: ओके फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो।
0: धन्यवाद।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए।

0: आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: मेरा नाम मैडम।
4: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
5: हाँ, तक भूला गई नी?
4: नहीं, बिल्कुल याद है। आपका नाम प्रीति है ना?
5: हाँ, मेरा नाम प्रीति है।
4: फिर बताएं कैसी हैं प्रीति जी?
5: हम ठीक बनी।
4: फिर बताएं क्या होता?
5: पूछो ना, आप ये खाना खा के बैठल बनी। रुआ खाना खानी है?
4: हाँ, कहीं कौन सा गाना सुने रुआ?
5: रव का नाम हो?
4: भारती।
5: रव जी बड़ा नीमन रहा मैडम।
4: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
5: पिया छोड़ दी ही ना।
4: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
5: आपको, बस आपको।
4: जी बिल्कुल,
5: आप सुन लीजिएगा।
4: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: रो बहुत शुक्रिया मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो एक्सप्रेस में।
1: जी मैं उमा शंकर दिल्ली से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से। ठीक है, अपना सुनाइए।
0: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है?
1: भारती जी बोल रहे हैं ना?
0: जी,
1: सुपर उत्तम फिल्म का ये चांद कोई दीवाना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: और मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, साथ में काम करने वाले है, वो सब कोई सुनता है।
0: ओके,
1: और आपको भी सुनाना है, हमें भी सुनना है।
0: जी बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिक्स, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: The phone can be much dearer to get it.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो।
19: हेलो,
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: सलाम मैडम
18: जी,
19: मनोज कुमार बोल रहे हैं।
18: हाँ हाँ,
19: हमको गाना सुना दीजिए आया सावन झूम के।
18: जी,
19: अभी तो यहाँ बारिश हो रहा है, आज लेट से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ ना मैडम?
18: जी, बारिश की वजह से थोड़ा हम भी लेट हो गए।
19: इसलिए लगा रहे थे, मैं लग रहा था।
18: जी, और बताएं ये गाना किसी को डेडिकेटेड है?
19: डेडिकेटेड सरिता कुमारी को और आपको और रेडियो जिन के सारे श्रोताओं के लिए है ये गाना।
18: जी, और सब बढ़िया है ना?
19: बारिश अभी हो रही है हमारे यहाँ।
18: जी, तो मौसम तो ठंडा हो गया होगा?
19: हाँ, एकदम ठंडा, यहाँ तो ठंडे है 2-3 दिन से।
18: हाँ,
19: ना ज्यादा गर्मी नहीं है यहाँ।
18: सब तो बढ़िया है।
19: हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग पूरा इधर देहात में है ना, मुंगेर जिला।
18: गांव में बहुत ठंडा रहता है, हल्का, उतना गर्मी नहीं पड़ता है।
19: यहाँ गाछ कुछ ज्यादा है ना, आम का बगीचा बहुत ज्यादा है, हम लोग को धूप लगता है तो गाछ के पास चल जाते हैं।
18: चलिए फिर ठीक है, सॉन्ग प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, थैंक
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: यू। और आपको पहले नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया, आपने बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा है अभी?
0: अभी काम पे हूँ।
1: अच्छा, कौन सा काम?
0: वही केमिस्ट का काम करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, याद आ गया।
0: कह रहे हैं कि आज का फरमाइश है।
1: बताएं क्या फरमाइश है।
0: लता जी का गाना है, एक गाने का नाम जो है ना वो है अरे अभी दिमाग से था, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: सभी लोगों को, सब लोग सुनेंगे आपके साथ। आपको तो प्ले करना है, साथ में आप ही सुनिएगा।
1: जी चलिए फिर, ठीक है, सॉन्ग प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रूम
0: नाम
1: कॉल कर
0: नाम
1: जी।
0: नाम नहीं पूछी मेरा।
1: ऐसे ही आपको पहचान गए।
0: अनिल बात कर रहा हूँ, छोटपुर से।
1: जी जी चलिए फिर, ठीक है। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
10: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: नमस्ते मैम।
13: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
14: मैं रुद्र बोल रहा हूँ।
13: कहाँ से?
14: भिड़वा से।
13: जी, क्या हाल है?
14: ठीक है।
13: क्या करते हैं आप?
14: पढ़ता हूँ।
13: कौन से क्लास में?
14: अब गया 5 में।
13: 5 में है तो पढ़ाई अच्छी चल रही है।
14: हाँ।
13: ये बढ़िया है। फिर बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
14: आज रात मजा वाला।
13: कौन सा सॉन्ग?
14: आज की रात मजा हो।
13: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
14: सबसे पहले आपको।
13: जी,
14: जिसको रेडियो रंजन सुन रहे हैं।
13: ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
14: बोल रही है?
13: नहीं।
14: वैसे आपका नाम क्या है?
13: मेरा नाम भारती है।
14: ठीक है।

0: हेलो
1: जी नमस्ते। बहुत बहुत
0: जी,
1: स्वागत है
0: नमस्ते
1: आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी। नमस्ते, क्या
1: नमस्ते जी।
0: हाल खबर? ठीक
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं। क्या
0: तो है,
1: नाम?
0: बारिश तो
1: जी
0: हुआ जी,
1: जी बारिश हो रहा है इधर।
0: पानी तो बहुत हुआ।
1: मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हुआ है जिसके
0: मैं
1: कारण।
0: बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैं पचकरा से बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं, और सब बढ़िया है ना?
0: सब बढ़िया है।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना सुनना है, मलमास चल रहा है ना, शिव शंकर जी का गाना बजा दीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम का जी।
1: ओके। और
0: मैं गाना को फरमाइश है जी।
1: ये गाना किसको सुनाना
0: हाँ, सुनना है हमको, सुनना ही है आपको, सुनना ही है।
1: है?
0: जितना इसमें जो रेडियो रेंज में जुड़े सभी लोग सुनेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: किसको किसको हम नाम रखे, नाम इतना रखने तो याद नहीं पड़ेगा।
1: कोई नहीं, जो याद है उन्हें ही बता दे।
0: अब सही रहने दीजिए संक्षेप में
1: जी
0: जी।
1: जी बिल्कुल, चलिए फिर ठीक है। जी
0: रिकॉर्डिंग बहुत लेट से चालू हुआ है जी
1: क्योंकि बारिश हो रहा था तो मैं भी लेट ही से आई यहाँ। चलिए
0: जी ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ठीक
1: फिर
0: है
1: ठीक
0: जी
1: है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ।
0: जी
1: रेडियो
0: जी
1: रंजन में
0: जी
1: कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: नमस्ते।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
8: जी, बाल देव सिंगापुर।
9: जी, कैसे हैं आप?
8: ठीक है, आपन बताइए।
9: मैं भी ठीक हूँ।
8: की बरसा पानी
9: सॉन्ग
8: जी।
9: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना है?
8: अमन आशीष सॉन्ग आयुर्वेदिक। उधर बारिश हुआ कि नहीं आज?
9: आज बारिश हुआ है, इधर भी
8: इधर भी हुआ है।
9: मौसम तो ठंडा है।
8: जी जी, अभी पीप की बरसते है पानी।
9: और सब बढ़िया है ना?
8: हाँ सब बढ़िया है।
9: चलिए फिर ठीक है, सॉन्ग प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: नमस्ते
9: नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555-94-94-53
6: और 90-97-61-60-02।
9: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
10: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और शो स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम से आप जुड़ पाएंगे और अपने पसंद के गाने सुन पाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी गाने का फरमाइश करेंगे तो आप पुराने गाने का फरमाइश करेंगे। ये बातें हर रोज़ आप सभी के बीच बताई जाती है। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें। पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, और मुझे सॉन्ग सुनना है पवन सिंह का।

पहले ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह होने से पहले। गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है आ अब लौट चले। टाइटल ट्रैक मासूम कौसर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौसाद भाई, जगदीप, आयुष, प्रिंस, लक्की, शमीर, शकीब, शनी, रुबीना, ब्यूटी और हीना, गुड़िया, साजिदा, गुलशन, सबीना, यास्मिन, सलेहा, आफरीन, अरीशा, सुनो भैया आपको भी। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं आ अब लौट चले से। कुछ मैसेज और पहुँचे और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। गुड इवनिंग, सुनो सर गाना सुना दीजिएगा। अनिल कुमार जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, छोटपुर से है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम जय माता दी। सुनो भैया सबको बोल दीजिएगा मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, और मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए जो कि है परदेश या इतना बता सजना। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। डार्क द फायर मूवी से शायद इस गाने की फरमाइश किए हैं। तो फिलहाल हम गुलाम हुसैन के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एम छम 90.4 FM पर।

रेडियो एम जी 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे और आगे मैसेज कई पहुंचे हुए, और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे शिल्पी जी की। और यहाँ पे मैसेज करती हैं नाइस सॉन्ग, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते सोनू सर जी, हम दीपक दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू महाली पंजाब से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है, और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल बढ़िया है, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है शबीना खातून। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है विपुल सिंह फ्रॉम गोपालगंज से, सुनो भैया, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और बंदर हमारे साथ आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि इसी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए यह गाना मुझे सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं एमपी महमूद केरला से, तो बिल्कुल महमूद जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स सुनो भैया गुलाम हुसैन, तो बिल्कुल आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज, हेलो सुनो भैया, मैं परवेज नवादा से बोल रहा हूँ, और कल मेरी फरमाइश का गाना नहीं बज पाया था, कृपया आज मेरा पसंदीदा गाना, तो बिल्कुल कल तो शुरू नहीं शो ही नहीं हुई थी और आज शो हो रहा है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ये शो चलता है, और सप्ताह में एक ही बार गाने के फरमाइश करने का मौका मिलता है। तो फिलहाल आगे कहीं मैसेज पहुंच रहे थे, मैसेज को रोकते हैं और गाने के फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश भोजपुरी अंदाज में रेडियो एम जी 90.4 FM पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और फिर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम जिम 94.4 एफएम पे सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो बाबू हमो जल्दी ये बानी और अपने जाके इनका सैया जी के समझा दी कि इतना सजनी के साथ थे जुल्म ना करी ना था FIR करा दे। और मैसेज करा था नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार कैसे हैं आप और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में रोहित जी देहरादून से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओहो सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के सुपर भोजपुरी अंदाज में ओल्ड सॉन्ग। और मैसेज करती हैं निशा भारती ओझोलिया मुचका गांव परखंड से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कहा सोनू भैया काहे प्रोग्राम के मटिया में मटिया मेट कराता नहीं मटिया मेट के गाना के फरमाइश रवे सब के तरफ से ही ना आवेला। और ये गाना के फरमाइश कैले रनिया शिल्पी जी बानी विद बिरवा से। और आगे मैसेज पहुँचल बा तो आगे के गाना के शामिल करें। और एक बात फिर से कहें कि रवालों से हर दिन कार्यक्रम के शुरुआत करे के समय और बीच में भी कहा जाला कि जब भी गाना के फरमाइश करी तो पुरान गाना का फरमाइश करी और जैसन कार्यक्रम चले वैसन गाना का फरमाइश करी ताकि रवा के और केहू के खराब ना लगे और हम रवा के जौन भी गाना फरमाइश करी हम सुना सकें। कई लोग नए गाने का फरमाइश करेला कई लोग इधर उधर से कोई सुनो गाने का फरमाइश कर देवेला और ट्राई भी करेला कि पता ना ये गानवा बच जाएगी ना तो ये सब रो लोग के थोड़ा सा इधर उधर कैला से हमने से भी कुछ से उल्टा पुल्टा हो जाला। और ऐसा कोनो बात नहीं है कि हमके जानबूझ के करी जा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं आप मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इनके तरफ से भी मैसेज पहुँचा हुआ है कि वाओ नाइस सॉन्ग रहा भोजपुरी में वैसे केहू दिलवा बोतले में ही भर के ले जाला केहू रुमाल में और केहू गमछा बिछा के मांगता बट अच्छा लागल सुन के। और चलिए अच्छा लागल तो अच्छा के बात बा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे पूरी करते हैं और इस गाने की फरमाइश करते हैं शिव सागर दीवाना जी। और गाने का बोल देते हैं दाग द फायर मूवी से ही शायद परदेश या इतना बता सजना कि तेरी कौन हूँ मैं।

रेडियो रेमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं, काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे, लेकिन एक के बीच में छोटा सा हम सुझाव साझा करेंगे आप सभी के बीच में। सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत यह सुझाव है और जानकारी है। हम सभी अभी जानेंगे टीबी रोग के बारे में। टीबी रोग क्या है? टीबी रोग एक संक्रामक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, और यह बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया है जिसके कारण यह रोग होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने पर हवा के माध्यम से फैलता है, ना कि उसके संपर्क में आने से, छूने से, या उसके दिए हुए सामान या उसके कपड़े या उसके कोई भी चीज़ों से होती है। वह यदि खांसी उसको खांसी आती है या छींकता है व्यक्ति, तो ही हवा के माध्यम से बैक्टीरिया उसके शरीर से बाहर आएंगे और हवा के माध्यम से दूसरे के पास यदि वह थोड़े से संपर्क में है तो उनकी लक्षण एक दूसरे में फैल सकती है। टीबी के लक्षण है, 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहना, खांसी के साथ बलगम या खून आना, सीने में दर्द, बुखार आना, रात में अधिक पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान महसूस करना, भूख न लगना, ये सारे हो सकते हैं। यदि ऐसा आपको होता है या किसी आस पड़ोस या अगल बगल के किसी भी व्यक्ति गांव ज्वार में ऐसा कोई बताता है तो उसे आप इसके बारे में बताएं कि ये लक्षण हो सकते हैं। आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, PHC या सदर अस्पताल या कोई भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं जो सरकारी संस्था हो, और वहाँ पे अपने आप को जांच कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अनदेखा कर दे और देखते देखते ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, थोड़ा बड़ा रूप ले ले। तो इससे हम लोगों को कोताही नहीं बरतना है, इसके लिए हम लोग को जागरूक रहना है। टीबी के कारण टीबी के जीवाणु से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, यह हम अभी बता रहे थे। और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, कुपोषण, मधुमेह, डायबिटीज़, धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से होता है। और टीबी की जांच, बलगम और छाती एक्सरे, रक्त परीक्षण करने से ही इसकी जाँच की पुष्टि होती है। तो आप लोग जैसा डॉक्टर सलाह देते हैं वैसे करना है, लेकिन सबसे पहला काम यदि ऐसा आप लोगों को या किसी भी व्यक्ति को आपके संपर्क में आए, जानकारी में आए, तो उसको सलाह दें, आपके घर में हो तो भी इसकी जांच कराएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर, और जो भी दवाइयां मिले वो आप समय समय पर लें। और इसके लिए सरकार अभियान चलाकर ऐसे रोगियों की खोज कर रही है और उनकी सेहत को ठीक करने के लिए अपने तरफ से अनुदान के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह दे रही है, ताकि इससे भी लोग जागरूक होकर अपने आप को इलाज कराएं, अपने को ठीक रखें। तो ऐसी होती है तो आप लोग थोड़ा सा भी कोताही न बरतें। ये रेडियो रिमझिम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आप सभी से अपील करता है। अब हम सभी आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को आगे इंजॉय करेंगे। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, हम सन्नी फ्रॉम सिपाया टोला से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है सनी जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भैया मेरा गाना बजा। बज गया बिल्कुल, अभी तो आपका गाना नहीं बजा हुआ है और आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, और एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने का कोशिश है मेरा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं अनिल जी छोटपुर से, और गाने का गाने की फरमाइश करते हैं, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। तो चलिए, आपके दिल में ख्याल है कि नहीं ये बताइए। फिलहाल हम गाने तो सुनाएंगे, तो आप सुने एंजॉय करें और हम लोग भी साथ में आपके सुनते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 9933965923।

रेडियो एमसी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर जी, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहाली पंजाब से, और आज बहुत दिन बाद फरमाइश भेज रहा हूँ। और संग तुम मुझे इतना प्यार, मोबी अंदाज तेरा मस्ताना, डेडिकेट ऑल फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँच रहे हैं तो मैसेज दिख लें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि बिल्कुल सही बात है, भले ही कोई बताए या ना बताए, ख्याल तो रहता है। नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि सच में सोनू बाबू ऐसा होता है क्या, पर हमारे लाइफ तो सिर्फ हमारे मैडम जी ही ख्याल आती है। क्या मैडम जी, यस, पर हमारे गीत सुना दी तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करें और बन रही हमारा साथ है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि किस्मत यह मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर यह मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई का वह इल्ज़ाम दे रही है। सुनो भाई, आज भी उसकी याद आती है, पर गाना सुपर से ऊपर दिलीप राम। तो चलिए आप भी बन रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश हम सभी दिलीप जी की, और इंजॉय करते हैं हम सभी।

काफी प्यारे सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे मैसेज भी पहुँचा हुआ है कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनो सर गाना बजावे खातिर, चली रहो के भी धन्यवाद भाई रेडियो एमसीएम गाना सुने रेडियो एमसीएम सुने खातिर। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्यार सिखा कर वो जुदा हो गए, प्यार सिखा कर वो जुदा हो गए, ना सोचा ना समझा खफा हो गए, अब किसको हम अपना कहेंगे, वो भी औरों की तरह बेवफा हो गए। सुनो भाई नमस्कार आपके लिए, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारा गाना नहीं बजेगा क्या, आज तो नहीं बज पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। फिलहाल अंतिम गाने प्ले करेंगे वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरी रक्सोल नेपाल बॉर्डर से, गाने का फरमाइश करते हैं और गाने का बोल देते हैं रफ़ी साहब जी की आवाज़ में, अरे मैंने तुझको चाहा धर्मवीर मूवी से। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और कल आप इंजॉय करते रहें, फिर मुलाकात होगी कल, नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।

0: रजिस्ट्रेशन के साथ
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुत देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
1: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
9: और 90-97-61-60-02।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
13: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा।

0: एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8669 73।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6252 पे।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971660।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99 393 65 9 23।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद के ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क

0: परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87 894 18744।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: हाँ माई,
3: कहाँ बने बेटा, कब से फोन लगाओ था?
2: अरे अभी दिल्ली में बानी, लाल किला के पास।
3: नौकरी उकड़ी मिलल की ना?
2: अरे मिल जाए नौकरी, बस तुम्हारा आशीर्वाद हमारा साथे रहे के चाहे।
3: अरे हमर लाल दिया।
2: अरे यार फिर अगले ठीक बा माई, हम बाद में करता नहीं फोन।
3: काहे बेटा, का
2: अरे दिल्ली में एगो बिल्ली पीछे पड़ल बा।

0: के नाम पे दे दे रे बाबा।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
3: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: आए, उठाओ बकवाल क्या बने रे,
4: उन्हें से घर के आगे रे लगाओ।
5: बरका हो गया कबड़।

0: अरे साला काम कर यार, चुपचाप काम कर, न तो तू जो यहाँ से आने का कॉल है हम तू है साला जब तो हम रहो लेके कहना भाग के ले।
1: अब कुछ हो के वाला नहीं के लड़की के कलबरिया था होता
0: ये साला खुद कटाई ये सब के कटवाई
1: ग्लोबल लेवल

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 9 23।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: चुप हो जाना।
4: दिल मेरे तू दीवाना है।
3: लो छोटी मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434 03।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87894-18744।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
10: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
9: तो देर मत कीजिए,
10: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है,
5: संतोष फर्नीचर लेकर
4: और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है,
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512।

जाइब अंधन खजाना में से फूटाई ना पैब हम हई हमार हई खेल को न काम के जाए के अकेल बा।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18-744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 90974602।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें।

0: और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैम, मैं गाना सुन रहा हूँ।
1: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
2: मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
1: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है जुदा अपने दिल भर को होने लगी है मोहब्बत।
1: अच्छा, और ये गाना आपको किसको सुनाना है?
2: आपको भाई और रुबीना जी, दीप्ती जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी और अरिशा, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मैं राजू बोल रहा हूँ
1: जी।
0: हम तो एक गाना सुनना है।
1: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी हम लुधियाना से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, कैसे हैं आप?
0: हम ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है?
0: बस काम हो रहा है, सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे।
1: बढ़िया है।
0: आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं 5 बजे से।
1: जी जी
0: हाँ, 7 बजे तक।
1: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: मेरा एक फरमाइश है, कोई राजू प्यार न करियो, दिल छूट जाता है।
1: अच्छा जी, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: जी एक मेरा मंजीत दोस्त है, उसको सुनाना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं। आप जो इतना रेडियो सुन रहा है सबको सुनाना चाहते
1: हैं। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: नमस्ते मैडम।
14: नमस्ते,
13: और बताइए
14: कैसे हैं आप?
13: बहुत बढ़िया, आप ना सुनाइए।
14: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है अभी?
13: अभी तो कुछ नहीं, आपके पास फोन लगा रहा है।
14: अच्छा, फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
13: गाना सुनना है वो पवन सिंह का।
14: जी, सॉन्ग बता दें।
13: सॉन्ग का नाम है धनी हो सब धन सहारे निभाते।
14: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
13: जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले बंदे हैं सबको, और साथ में आप भी।
14: जी, ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: बहुत आपको नमस्कार।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: अच्छा,
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपका प्रोग्राम सुने बहुत अच्छा लगा जी, आपकी आवाज बुलंद है।
0: जी धन्यवाद। और सब बताएं क्या हो रहा है?
1: अभी तो लेकर आ रहे थे, टाइम में थोड़ा देखते हैं, लग रहा है कि
0: तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: स्वास्थ्य अभियान का जाना है। स्वास्थ्य अभियान
0: क्या?
1: स्वास्थ्य अभियान का सफाई कर्मचारी का।
0: जी जी, किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: जितना भी लगे हैं मुझे स्वास्थ्य अभियान से भारतवर्ष में इनको चारों को
0: ओके
1: चार महीने के पश्चात मेरी स्वास्थ्य मिल गया और जितना ग्रामीण क्षेत्र से लगे हैं चारों को और आपको
0: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्कार।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको, मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना मेरे घर परिवार में, रेडियो रंजन पूरा परिवार। कैसे हैं आप लोग?
11: हम सब बढ़िया हैं। नाम बता दे अपना।
10: रामविलास प्रसाद कुशवाहा, कृष्णपुर बगहा, पूर्वी चंपारण से।
11: ओके,
10: तुम कैसा है उधर?
11: मौसम बढ़िया है अभी फिलहाल उधर।
10: जी जी जी, यहाँ पर भी सुबह में बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है इधर भी।
11: जी चलिए तो बढ़िया है।
10: जी जी,
11: एंड क्या फरमाइश है आपकी?
10: फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है और गाने का बोल है तू दीवानी है उतराजा।
11: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
10: जी सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ, और दूसरे होंगे संजय, साजिद, दीपक कुमार, दादी, रामचंद्र, मुखर्जी, मोहम्मद सलार जी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, जनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास, अभय कुमार, सुदीश कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, बौली प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी रेडियो रेंजिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
11: ओके फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: रेडियो रिमझिम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: धन्यवाद बहन। और बहन जी आप कैसे हैं अभी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी बहन जी हम भी बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है और व्यस्त है बहन जी।
0: ओके, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: और सब बढ़िया है बहन जी। इन दिनों क्या है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ बहन जी, किसान हूँ।
0: ओके,
1: और इन दिनों मक्का की कटाई चल रही है बहन जी, और धान की कटाई भी हो रही है, और गेहूं और चने की कटाई पहले से हो गई है।
0: हाँ, फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: जी बहन जी गाना सुनने से पहले बहन जी आप कौन बोल रही है? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी, प्यारी और लाजवाब पेश कर सकती है बहन जी।
0: जी मेरा नाम भारती है और मैं रेडियो रिमझिम से बोल रही हूँ।
1: हाँ तो भारती जी आपके लिए दो पंक्ति है, दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
0: जी बोलिए।
1: जी जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा जो है नदियों की तरह कल कल कल कल छल छल छल छल करके बहती रहे। और रेडियो रिमझिम में आवाज की दुनिया के बुलंद सितारे, प्यारी बहना भारती जी की आवाज जो है स्वर लहरी में, स्वर धारा में हमेशा बहती रहे। और हेलो रिमझिम का यह कारवां का सफर हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे बहन जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहन जी, तो मैं कुछ बोल दिया बहन जी।
0: जी
1: और आपके कुछ प्रशंसक श्रोता भाई बहन है बहन जी, इजाजत हो तो दो चार लोगों का नाम ले लूं बहन
0: जी। जी बोलिए।
1: जी हमारे सागर मध्य प्रदेश से हमारे प्रोफेसर चंद्रेश गौहर जी साहब है, जालौन उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव जी है, हमारे विजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है, दुल्हापुर यूपी से मुकेश कुमार कश्यप जी है बहन जी, और हमारे भारत बेगम वार्ड से भारत राम पटौती जी है, साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसूली से जितेंद्र दास मानिकपुरी जी है बहन जी, कन्या दमोह बालाघाट से हमारे आदरणीय झुरुआ राम साहू गुरु जी है, और डोंगरिया मलाखंड से मुन्ना लाल पाटले जी है बहन जी।
0: जी
1: और आर्यन रेडियो की बहुत ही प्यारी उद्घोषिका आरजे उद्घोषिका आप ही की तरह
0: जी,
1: हमारी बहना पूनम गौतम जी है। अगर आप भी सुनते होंगे बहन जी तो आप उसको जानते होंगे।
0: जी जी
1: है ना। तो बहन जी और इन दिनों गर्मी बहुत चरम पर है बहन जी।
0: जी गर्मी तो है,
1: और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए अपने घर के सामने
0: जी जी
1: पानी भर के रखना चाहिए, ताकि वो बेजान बेजुबान जानवर जो है बहन जी वो उस पानी को वो पी करके अपना शीतलता प्रदान कर सके।
0: जी बिल्कुल।
1: और अपना सेहत का ख्याल अवश्य रखे बहन जी, क्योंकि जान है तो जहान।
0: जी बिल्कुल। फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अब गीत तो ऐसा है बहन जी, एक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना है बहन जी, अरे यार सुन यारी मेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी।
0: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: ये गाना तो सबसे पहले तो हमारी प्यारी बहना आरजे उद्घोषिका बहन भारती जी को हम डेडिकेट करना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी अभी लिसनर श्रोता मित्रों का नाम लिया हूँ उनको भी डेडिकेट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे एफएम रिमझिम के जितने भी सुनने वाले तमाम श्रोता मित्र हैं
0: जी,
1: भाई बहन है, उनको हम डेडिकेट करना चाहेंगे बहन जी, और साथ ही साथ हमारे रेडियो रिमझिम के जितने भी आर्य उद्घोषक भाई बहन है
0: ओके,
1: उनको भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे भारती बहन जी।
0: ओके तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
8: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
14: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
14: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: नमस्कार मैडम, मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
18: जी जी, बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
19: क्रांति फिल्म का सुनना गाना मुझे।
18: जी,
19: क्रांति फिल्म का सुनना मुझे गाना। अब के बरस से मुझे भर दे रानी।
18: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
19: जी मैं सभी श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ और आपको भी।
18: ओके, तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैडम,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माइट्स वॉइस में।
1: हेलो मैडम,
0: क्या नाम है आपका?
1: प्रीति।
0: और आप कहाँ से हैं?
1: कोन्हा मोड़।
0: फिर बताएं कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
1: सोई हूँ। आपके पास कॉल लगने का इंतजार कर रही थी, सोमवार से, सोमवार को, फिर बुधवार को, एकदम दिन याद करके रखी हूँ कि हाँ आपसे बात करना है।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी, बता दें।
1: आहो राजा।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आपको, सिर्फ आपको।
0: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजी में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7055006144 या 7870331444।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87894 18744।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो मैडम, नमस्कार।
15: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: जी, आपको भी साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप गाना सुनवाने की। आज आज पहला दिन है कि आपका हम प्रोग्राम सुने हैं रेडियो पे।
15: जी
16: हाँ, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप जो है अदनान सामी का जो कव्वाली एक सुनवाई है।
15: जी जी,
16: भर दो झोली
15: है
16: ना। और जो आप टोन में, जो आप टोन में बोलती हो ना,
15: हाँ
16: हाँ, बहुत हमको भाता है, इतना अच्छा भाता है कि अब समय हो चुका है, ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है, ये तो आप बोलती हो ना, वो अच्छा लगता है। मैं अपने टाइम से हाजिर हूँ। हाँ, ये हमको बहुत, हाँ हाँ, ये हमको अच्छा लगा सुनकर, है ना। हमको

0: बहुत अच्छा लगा है आपको प्रोग्राम जो बना के आप डाली है रेडियो पे सुना रही हैं आप।
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा लगा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम मन्नान बोल रहे हैं कपूरथला से
1: जी।
0: आज कौन सा गाना सुनाइएगा मैडम?
1: बता दें आप कौन सा गाना सुनेंगे?
0: वो गाना सुना दिए झूठ बोले कौवा काटे।
1: जी बिल्कुल सुना देंगे। बताएं ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
0: पहले तो मैडम आपको है ना, और एक बाबू नाम का है उनको सुनाना है, और एक बेनजीर है उनको सुनाना है, बाबू को सुनाना है।
1: और सब बढ़िया है ना? आप ठीक है ना?
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया है, आपकी दुआ से बहुत कुछ अच्छा है। अपल का बारी है बकरीद का हम लोग का
1: जी,
0: और उसी का तैयारी चल रहा है।
1: फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रह सकते साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: अच्छा है, मेरा बताए कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है? खाना
1: कुछ नहीं, आपका इंतजार हो रहा है, कब तो रिकॉर्डिंग चालू होगा?
0: हो गया? ओके,
1: जी मैडम जी,
0: और बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: बंजारा फिल्म का कब आएगा मेरे बंजारा?
0: ओके, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो आते हैं सब दोस्तों के साथ।
0: ओके, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
15: जी नमस्कार।
16: नमस्कार
15: जी मैडम जी, क्या हाल चाल है?
16: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं।
15: हम लोग का तो ठीक ही है
16: जी। क्या फरमाइश है आपकी, बताएं।
15: दिल है बेटा मूवी का गाना है
16: जी।
15: क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन,

0: हैं। और सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ आपको, जितने रेडियो रेंजिम है सभी लोग सुनेंगे।
1: जी जी।
0: और हम लोग धनाव से एक साथ मास्टर भी सुनेंगे, और हम लोग जितने रेडियो रोशन तरह में काम करते हैं, तरह का काम हम लोग सभी लोग सुनते हैं। नौशाद भाई है, गिलानी भाई है, समीम हजाम है, शायद मुखिया है, लोग सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
1: थैंक यू। कैसी हैं?
0: अच्छे हैं, आप अपना बताएं।
1: हम भी अच्छा, हम श्रीमान से बोल रहे हैं, नीलम।
0: अच्छा जी, तो बताएं फिर क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं।
0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हमको गाना सुनना है वो नहीं है, नया मेहमान जुड़े वाला का गाना नहीं है, करीना पांडे का नया मेहमान जुड़े वाला का।
0: जी,
1: वही वाला सुनना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आप सभी को, जितने लोग रेडियो सुन रहे हैं उन सबको।
0: ओके,
1: मैं हाथों को सुनाना चाहती हूँ।
0: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22567 या 97-714-86164।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो। बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: नमस्कार आरती जी, दिल से धन्यवाद।
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: आपको दिल से धन्यवाद मैम।
11: जी शुक्रिया,
12: बहुत दिनों से इंतजार था, आप सब सोचला दिए।
11: जी
12: और सब सुनाइए।
11: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
12: बस हम भी काम पे हैं।
11: जी
12: टाइम हुआ तो रुक गए कॉल लगाए, तो दूसरा कॉल लगी है ना।
11: जी
12: परसों कैसा है मौसम?
11: मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
12: बारिश
11: हो गया? मौसम कैसा है?
12: इधर तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकल रही है। नाश्ता पानी हो गया?
11: जी मेरा हो गया है, आपका?
12: हमारा तो 9 बजे ड्यूटी है ना, तो नाश्ता करके तो आते हैं।
11: अच्छा,
12: अब चाय के टाइम हुआ, चाय का होगा।
11: ओके फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
12: आज सीमा सरगम के सीमा गुप्ता का है सॉन्ग।
11: जी
12: मारही के बातें तो मार देना जान से, नजरिया के बांध से।
11: जी
12: सीमा गुप्ता का है।
11: हाँ हाँ
12: हाँ, तो वही बजा दीजिए।
11: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
12: पूरे सारे लिसनर जितने सुनने वाले हैं सब सुन लेंगे, हम तो पुराना लिसनर है ना।
11: हाँ जी,
12: बहुत दिनों से इंतजार था कि कब भारती जी का थोड़ा शो सुने कैसा है। तो कल सुने हैं तो हाँ, मैं बोला कि हाँ ठीक है चलिए
11: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: हाँ जी।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: करिश्मा कुमारी।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: पीपल नारायण से
0: जी। कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं, आपको फर्स्ट कॉल लगा रहे हैं।
0: खाना हो गया?
1: हाँ, आपका हो गया
0: जी। फिर बताएं आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमको नीलकमल सिंह के बाद में गीत सुनना है।
0: और कौन सा सॉन्ग?
1: कोई भी बजा दी।
0: आप अपनी पसंद नहीं बताएंगी?
1: व्यवसाय बजा दीजिए।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहती हैं?
1: हाँ, सबसे पहले आपको, और जितना सुन रहे हैं लोग रेडियो रिमिजी मुझको, आप मेरे गणेश जी सुनेंगे और हम सुनेंगे।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू दीदी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99 55 94 94 53
7: और 90 97 61 60 02।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
13: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
14: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
13: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
15: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 53 69 015 पे।
16: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है दोस्तों एक्सचेंज तो मांगता है।
17: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
18: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
17: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
19: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
20: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
21: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98 527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98 527 88 291 या 95 238 74 088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
22: एपिसोड 29 29।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: अपने जिले के मशहूर

0: डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
7: एपिसोड 30 30।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता दानव मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 सालों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को पिछले 12 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि कल 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह श्री मोदी में देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रदेश में अब नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और अनुमोदन प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझा करण की पालों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।
1: डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहां भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए, कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करेंगे। रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है, और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे।
0: राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्री चौधरी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर ली हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर रही है। इस नियमावली को अगले 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा।
2: कोचिंग संस्थाओं को कानून के दायरे में लाने के हम एक बिहार राज्य कोचिंग नियमावली भी बना रहे हैं जो अगले 3 महीने के अंदर उसे लागू करेंगे और सबको उसके दायरे के अंदर लाएंगे। उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाएंगे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना।
0: श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। श्री प्रधान ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई निर्देश जारी किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के पटना, दरभंगा, मोतिहारी समेत 34 जिलों के 35 शहरों में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और डाक विभाग के समन्वय से उन्हें विशेष विमानों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। पुलिस को सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाने या फर्जी प्रश्न पत्र प्रसारित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि का एक कार्यक्रम था, जिसे कहा जा सकता है कि एक लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है।
0: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आज पटना से थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पटना से वेल्लोर रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब तक 43 बच्चों का मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य का दक्षिणी हिस्सा जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं उत्तरी और पूर्वी हिस्से में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गया जी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उलानबटार में दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। गंदन मठ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ हुए इन समझौतों से बौद्ध विरासत और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: नालंदा विश्वविद्यालय का पहला ऐतिहासिक समझौता उलान बटार के प्रसिद्ध गंदन मठ के साथ हुआ है। ये साझेदारी दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आधारित है, जिसके तहत दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण, संयुक्त अनुसंधान और प्राचीन नालंदा की ज्ञान परंपरा को सहेजने पर काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरा समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ सम्पन्न हुआ। इस समझौते के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और छात्र संकाय आदान प्रदान कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। समाचार कक्ष से निखिल आनंदगिरी।
0: एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है।
3: बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत की जूनियर सीनियर टीम्स में खेले। अब बिहार किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में खेल के मामले में पीछे नहीं रहे।
0: पत्रकारों से बातचीत में सावन कुमार ने कहा कि विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है।
4: एज अ गोलकीपर अभी अंडर 18 इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ था और एशिया कप में हमारा गोल्ड मेडल, काफी अच्छा फील हो रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में काफी डेवलप किया गया, तो उस चीज को लेकर मैं काफी थैंकफुल करना चाहता हूँ।
0: पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक के पास पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक स्विट्जरलैंड की महिला और एक म्यांमार का युवक शामिल है। दोनों पर बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सभी प्रकार के निःशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने को लेकर विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौड़ बालूखाट स्थित चालान सेंटर से अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने दो कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के तीसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70705763100 या 70705042100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी
11: की सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
8: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
10: क्यों, क्या हुआ है?
9: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
10: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
9: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
11: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
12: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
7: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस।

0: एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। निरस्तीकरण संबंधी सूचना 25 अप्रैल 2026 को रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि संविदात्मक आधार पर टीजीटी सामाजिक विज्ञान की रिक्ति को प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया है। ये रिक्ति सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए प्रकाशित हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। डीजीएम उत्पादन विकास, डीजीएम अनुसंधान एवं विकास, वरिष्ठ प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक, वरिष्ठ प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन और कंपनी सचिव। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों के लिए देखिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.glidersindia.in। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जयसिंह रोड नई दिल्ली 1 आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कनिष्ठ अभियंता, कुल पदों की संख्या 6, कनिष्ठ अभियंता 1 पद, कनिष्ठ अभियंता QS एवं C 1 पद, कनिष्ठ अभियंता योजना 2 पद और कनिष्ठ अभियंता बिलिंग तथा अनुबंध 2 पद। गैर तकनीकी पद कर्मचारियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है: सहायक प्रबंधक प्रशासन 1 पद, लेखाधिकारी 1 पद, सहायक 1 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद, कनिष्ठ सहायक 2 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पद। विस्तृत नियम शर्तों और आवेदन तथा आरक्षण संबंधी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dphcl.com और www.delhipolice.gov.in। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम इंडिया ऑप्टल लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है एक पद के लिए आवेदन। पद का नाम है सलाहकार फील्ड ट्रायल कोऑर्डिनेशन। थल सेना के सेवानिवृत्त मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री डिवीजन से संबंधित हों केवल वही आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। विज्ञापन का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड की इस वेबसाइट पर जिसका पता है www.indiaoptal.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
8: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
3: The amount of time we have spent
4: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
3: एक्चुअली द प्राइम नेशनल गोल्स ऑफ द मोमेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूं।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
14: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
15: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
14: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
14: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
15: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
15: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
20: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
21: क्यों, क्या हुआ है?
20: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
21: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
20: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
21: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
22: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
23: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नाबालिग से गैंग रेप पर मची खलबली, पुलिस जांच में जुटी। डॉक्टर से मांगी गई 12 लाख रुपए की रंगदारी। नरेनिया में खेत से मिला एक युवक का शव। सड़क पर मिले लाखों रुपए के आभूषण को पुलिस के पास किया जमा। और अलग अलग जगहों से 2 दर्जन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात जैसे ही सामने आई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना रविवार का है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी के बयान पर मामला दर्ज किया है। किशोरी का मेडिकल चेकअप कराया गया है, डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज भी कराया गया। घटना के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी, जिसके बाद तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह युवती पीड़ित नाबालिग बच्ची की विधवा मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पुलिस इस कांड में आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस घटना के संदर्भ में खबर लिखने तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। एक डॉक्टर से 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा है, जिसने एक डॉक्टर को 12 लाख रुपए की रंगदारी फोन पर मांगी है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की है। मामला भोरे थाना क्षेत्र के खजुरहा मोड़ स्थित गिरजा शंकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता का है। उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित चिकित्सक ने बताया कि 7 जून को उनके मोबाइल फोन पर 2 अलग अलग अज्ञात नंबरों से कॉल आए। फोन करने वाले ने खुद को कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा बताते हुए सीधे 12 लाख रुपए की मांग की और चेतावनी दिया कि अगर 48 घंटों के भीतर रंगदारी की रकम नहीं पहुंचाई गई तो उनके पूरे परिवार को जान से मारेगा। इस सीधे अल्टीमेटम के बाद से पीड़ित चिकित्सक और उनका पूरा परिवार गहरे खौफ और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। चिकित्सक ने पुलिस से दोनों मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने तथा अपने परिवार को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनिंदर मिश्रा पर 19 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वह बिहार पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने इस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी और डकैती जैसे संगीन अपराध से जुड़े 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाल ही में लाला छापर में हुए ज्वेलरी लूट कांड में भी यह मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। मीरगंज पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के नरेनिया में NH 531 के पास खेत से एक युवक का शव बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर FSL की टीम के साथ मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर हथुआ के सुहागपुर के रहने वाले युवक अनीस कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और चौवर में इसके शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने चौवर से शव को बरामद किया है। पुलिस अब मृतक के व्हाट्सएप नंबर पर मिली हत्या की सूचना और अन्य साक्ष्यों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक युवक ने लाखों रुपए के गहने जो सड़क पर मिले थे वह पुलिस के पास ले जाकर सुपुर्द कर दिया। इसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सिधौलिया थाना क्षेत्र के 2 व्यक्तियों साबिर एवं तुन्ना शाह द्वारा एक लेडीज पर्स थाने में जमा कराया गया। दोनों लोगों ने बताया कि यह पर्स उन्हें सड़क पर गिरा हुआ मिला था। पर्स की जांच करने पर पुलिस को इसके अंदर से सोने चांदी के आभूषण सहित कई सामान मिले। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पर्स के वास्तविक स्वामी की पहचान की और पहचान करने के बाद यह पर्स उन्हें सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि यह पर्स मीरा कुमारी पति राहुल महतो, जो जोगियार थाना सिधौलिया की निवासी हैं, उन्हीं का था और सड़क पर गिर गया था। पर्स जब उन्हें वापस मिला तो अपने गहने और कीमती सामान पाकर वे बड़ी खुश हुई। पुलिस और जिन लोगों ने यह पर्स थाने तक पहुंचाया उनका उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 दर्जन से अधिक लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। इन सभी लोगों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें हत्या के प्रयास, लूट के मामले और शराब तस्करी के मामलों में सर्वाधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब और कई वाहन भी पकड़े हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए अभियान चला रही है और इसी कड़ी में यह गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि थावे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी रत्नेश सिंह उर्फ झुन्ना है, जो लछवार थाना थावे का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद आज पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्य में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई तथा गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में राजद पार्टी ने सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्षों की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह और प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने भी कई प्रखंडों का दौरा कर धरना कार्यक्रम में भाग लिया। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 130 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया और इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गोपालपुर पुलिस ने नराहवा शुक्ल हाईवे पर की। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया। इसके अंदर से 130 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में फिरोज आलम, पिता मोहम्मद कमरुद्दीन, साकिन बखरी, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब को जब्त कर अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी के कद्दावर नेता उद्योगपति राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू बाबू का एक मामला उपभोक्ता फोरम में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां एक मामले में इनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले में आज विधान परिषद के सदस्य राजीव बाबू के तरफ से अधिवक्ता अदालत में अपना पक्ष रखे। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक सप्ताह का वक्त लिया है। इस मामले में वादी धर्मेंद्र क्रांतिकारी का कहना है कि उन्होंने एक गाड़ी इनके एजेंसी से खरीदा था और वह गाड़ी लगातार खरीदने के दूसरे दिन से ही खराब हो गई थी। कई बार शिकायत के बाद भी गाड़ी का सर्विसिंग ठीक से नहीं कराया जा सका, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस किया। उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी को उनके पैसे वापस करने का आदेश दिए, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी एजेंसी के तरफ से उनका पैसा वापस नहीं किया गया। इसी मामले में एजेंसी के मालिक, जो अभी बीजेपी के कद्दावर नेता और गोपालगंज से विधान परिषद के सदस्य हैं, राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू बाबू पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जिला विधिज्ञ संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। 11 जून तक सभी उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। इसको लेकर पूर्व महासचिव शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ महासचिव पद के लिए आज नामांकन किया। अधिवक्ताओं के बीच गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कुल 28 पदों के लिए नामांकन चल रहा है। चुनाव के लिए 24 जून को मतदान होगा और 25 जून को मतों की गिनती कर परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नाबालिग से गैंग रेप पर मची खलबली, पुलिस जांच में जुटी। डॉक्टर से मांगी गई 12 लाख रुपए की रंगदारी। नरेनिया में खेत से मिला एक युवक का शव। सड़क पर मिले लाखों रुपए के आभूषण को पुलिस के पास किया जमा। और अलग अलग जगहों से 2 दर्जन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
24: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493456 या 97-0-97-06-575।
25: सुनिए,
26: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
25: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
26: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
25: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
27: प्रसाद क्लिनिक,
28: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
27: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
28: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
25: सुनिए,
26: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
25: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
26: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
25: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
29: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
30: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
14: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
31: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
14: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
31: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
14: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
31: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
14: संपर्क करें 8470103992 या 9765065750।
32: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और हर रोज की तरह मैं आज भी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ। समय 9:20 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने का फरमाइश करना है। ये बातें और आप सभी से बीच हर रोज़ बताई जाती है और आग्रह की जाती है कि पुराने गाने के फरमाइश करें। तो आप लोग जब भी गाने का फरमाइश करें तो पुराने गाने की ही फरमाइश करें तो बेहतर रहेगा। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज अवश्य करें।

और हमारे पास पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते शोंग रब्बा इश्क ना होवे। और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय क्या खैरियत है, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और कल वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, मैसेज करती हैं शबीना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है विपुल सिंह फ्रॉम गोपालगंज से, सुनो भैया। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है आज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से और गाना सुनना है। पिछला हफ्ता कुछ मिस्टेक के कारण आपने दूसरा गाना प्ले कर दिया था और मेरा मनपसंद गाना नहीं प्ले हो सका। तो गाने की फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश, और फिर आगे मैसेज पहुंचा, अभी तो गाने प्ले हुए नहीं है। और मैसेज करती हैं निशा कि थैंक्स, चलिए आपको भी धन्यवाद है और बने रहे हमारे साथ, गाने एंजॉय करने अभी बाकी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, सुनो भैया आज तो मेरा सॉन्ग सुना दीजिए और मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या। तो मैसेज अभी जो हमने रीड किए हैं वही पहुंचा हुआ है, बाकी आप मैसेज किए तो पता नहीं, अभी मेरे पास तो इतना ही आया है। और इस मैसेज को करती हैं, अपना नाम नहीं बताई हैं, मुस्कान गोपालगंज से हैं। और आप आगे जो भी मैसेज हमने रिसीव नहीं कर पाए हैं उस मैसेज को भी आप रिसेंड करती हैं तो हो सके तो मेरे पास पहुंचे, तो आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल हम निशा के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। और अब्बा इश्क ना होवे।

94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और अब्बा इश्क ना होवे अंदाज मम्मी से गाने की फरमाइश किया गया था निशा जी की तरफ से। और आगे मैसेज कई पहुंचे हुए, लेकिन मैसेज से पहले हम एक आप सभी के बीच में सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। और आज हम जानेंगे, पिछले दिन जाने टीबी के बारे में, और आज जानेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, लू का उपचार। और सबसे पहले हीट स्ट्रोक गर्मी के मौसम में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर के तापमान नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसका उपचार है तुरंत रोगी को ठंडी एवं छायादार जगह पर ले जाएं, तंग या सर अतिरिक्त कपड़े ढीले कर दे ताकि शरीर को ठंडा होने में मदद मिले। ठंडे पानी की पट्टियां सिर या गर्दन, बगल और जांघों पर रखे ताकि शरीर को ठंडा जल्द किया जा सके। पंखा चलाए या शरीर पर ठंडा पानी छिड़के। यदि रोगी होश में है तो ठंडा पानी या ORS या अन्य तरल पदार्थ पिलाएं ताकि रोगी को राहत मिले, और यदि रोगी बेहोश हो तो उसे कुछ भी ना खाने पीने को दे। तुरंत डॉक्टर या अस्पताल में संपर्क करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसी समस्या दिखाई दे किसी भी व्यक्ति या आस पड़ोस घर में, तो इसमें कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है। शरीर का तापमान सामान्य होने तक रोगी की निगरानी करते रहना है ताकि रोगी की हर समय की समस्या को आप जान सकें। इसका बचाव है तेज़ धूप में लंबे समय तक ना रहें, पर्याप्त पानी पिए, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक बाहर जाने से बचें। ये सारी हीट स्ट्रोक की गतिविधियाँ हैं, और जिसमें बचाव, इसकी देखभाल सारी इसमें शामिल है। तो आप लोग से हर दिन एक अपील करेगा रेडियो रिमझिम परिवार, सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करें और इसका क्या ही कहा जाए, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी रेडियो रिमझिम के माध्यम से थोड़ी सी अपील की जाए। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम की आगे बढ़ाएंगे। अगली मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, और अगला गाना का फरमाइश भी पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे सॉन्ग सुनना है, याद याद याद बस याद रह जाती है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ सर प्ले कर दीजिएगा मेरा सॉन्ग। सनी राज पटेल जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ मेरा सॉन्ग बजा दीजिएगा, और काफ़ी दिनों से मैसेज तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं परवेज जी नवादा से, तो बिल्कुल आपकी मैसेज तो हमें लगता है कि पहली बार ही पहुंचा हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू हम भी हैं। वीरेंद्र गुप्ता अभिया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और मन करे तो संग चला दीजिएगा, मन नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी फरमाइश पूरे करने की कोशिश रहता है, बशर्ते हमारे पास जितना समय मिला है उतना ही में हम कुछ कर सकते हैं, उससे आगे तो कोई आदेश ही नहीं है। यदि आदेश होता है तो हम आगे कुछ कर पाते हैं, और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम,
जय माता दी। सुनो भैया, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मिसेस को करते हैं शिव सागर दीवाना जी। आगे मिसेस पहुंचा हुआ है, और सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मिसेस करते हैं दिलीप राम जी, दिल्ली से बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं शबीना खातून की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश कल की पहुँची है, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है। और गाने का बोल है, जाने मन आज से दिल है तुम्हारा। सुनाना चाहती हूँ आपको, और अफसाना अपी, सबा अपी, रोशनी अपी, सजदाग जी, गुड़िया जी, हाजरा सिस्टर, खुशी जी, नीसा जी, सोनी जी, और शिल्पी जी, समीर भाई, कमरान भैया, साहिल भाई, दीपक भाई, इरफान भैया, गुलाम हुसैन भाई, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, और श्रावण शर्मा जी, और जो छूट गए उन सभी को डेडिकेट करती हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। जाने मन आए से दिल है तुम्हारा।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MCM 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू हम भी हैं। तो बिल्कुल आपकी मैसेज पहुँची है, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि कैसे हैं सर शौंग, किसी से तुम प्यार करो। और इस मैसेज को करती हैं शरिया फ्रॉम अमवा मौजम से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हेलो सर मैं शनि राज पटेल। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, आखिर तुम भी आईने की तरह ही निकले, जो भी सामने आया तुम उसी के हो गए। इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश प्ले होगी। और गाने का बोल दिया गया है गली में आज चांद निकला। विपुल सिंह जी मैसेज किए हुए हैं तो इनकी गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम प्यारे से संगीत कार्यक्रम में एसएमएस फरमाइश में प्यारे से सॉन्ग सुन रहे थे। गली में आज चांद निकला और इस गाने के फरमाइश किए हुए थे विपुल जी, और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश किया गया है मौसम ये सुहाना, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे आशा भोसले जी की और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ों में, और या घर की इज्जत मूवी से गाने के फरमाइश किया गया है 1994 में आई हुई थी। तो चलिए आपकी फरमाइश को हम प्ले करते हैं रोहित जी और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे आप भी इंजॉय करें और सुनते हैं तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल प्ले करते हैं, सुनते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रमजीम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सभी। और इस गाने की फरमाइश करने वाले रोहित जी देहरादून से, और यहाँ पे मैसेज करते हैं कि सुनो भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा मनपसंद गाना बजाया, इसके लिए थैंक यू, और बताना गाना कैसा लगा आपको। तो बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश आपकी तरफ से, और आगे मैसेज आगे भी गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, और इनके तरफ से कहा गया था कि मन करे तो नहीं, सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहता है। और इस गाने की फरमाइश करने वाली प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह से, और गाने का बोल दिया गया है, लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे। तो ये भी काफ़ी प्यारे गाने हैं, तो प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी अगली फरमाइश, लाखों आशिक मर जाते हैं तेरे एक मुस्कान पे।

रेडियो एम सी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और अभी गाने सुने थे लाखों आशिक मर जाते हैं तेरे एक मुस्कान पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, वेरी नाइस सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, ओहो कमाल के सॉन्ग। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि दोस्त वो नहीं जो जान देता है, दोस्त वो भी नहीं जो मुस्कान देता है, सच्चा दोस्त वो भी वो है जो पानी में गिरे आंसू को भी पहचान लेता है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स का भी वेलकम कीजिए, शबीना खातो फ्रॉम दिल्लीलिया से। तो बिल्कुल आप सभी, आपके सभी फ्रेंड्स का सबहरे स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमशन सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, राधे राधे सर जी, मैं सुजीत कुमार बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से, और मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि सुपर सॉन्ग बज रहा है गली में आज चांद निकला, सरिया फ्रॉम आमो मौजम से मैसेज किए हैं। और आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश पूरी करते हैं। और अगली गाने की फरमाइश करते हैं परवेज जी नवादा से, और गाने का बोल देते हैं। गाने का बोल देते हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। चलिए आपकी भी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी कसम खा लिए हैं तो जीतते रहिएगा, नहीं तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा, अनहोनी की संभावना बनी रहती है कसम खाने के बाद से, डर लगने रहता है। तो फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी, और आप भी इंजॉय करें।

अभी प्यारा संग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे थे परवेज जी की फरमाइश तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश दिलीप जी की तरफ से है और इनके तरफ से गाने की बोल दिया गया है, सुबह सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा, ओल्ड सॉन्ग सुनाना चाहते हैं आपको शबीता जी, बबीता जी, सरफुद्दीन भाई, पंकज भाई, राघव भैया जी को और इनके जानने पहचानने वाले तमाम श्रोतागण को डेडिकेट करते हैं। तो इसलिए दिलीप जी आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं लेकिन नाम लेने की अभी समय नहीं है, बहुत कम समय है मेरे पास और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे बहुत सारे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं तो आप अपने गाने के साथ एंजॉय करें रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छ फोर एफ एम पे सुन रहे हैं आप सब और सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज हमारे पास सनी राज के तरफ से पहुँचा हुआ है और इनकी तरफ से गाने के फरमाइश जो है नई गाने के फरमाइश किए हुए हैं और कई मैसेज किए हैं, फिर भी इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं गाने की वजह से। आगे बढ़ेंगे और आगे गाने के फरमाइश हमारे श्रोतागण किए हुए हैं मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं कि हमें भी गाना सुनना है और गाना सुना दीजिए। मूवी का नाम है तेरे नाम, गाने का बोल है ओढ़नी ओढ़े के नाचो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर मैं 5-6 माह बाद जुड़ा हूँ, कोई बात नहीं है, जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद है। फिलहाल आपके गाने हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और जो भी श्रोतागण छूट गए हैं उनकी फरमाइश कल प्ले करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Binimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said, the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.
4: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजीम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: इतना सवाल एक बार पूछ ले बू, पहले अपन बताओ तो हम अपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताई, विचारा के बाद इशारे में समझ ली है।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: दिनेश कुमार
1: जी। कहाँ से?
2: पिपरा नारायण से।
1: कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ।
1: और सब ठीक ठाक?
2: अभी अभी जो बात कर रहे थे ना, मेरे बहन जी का सुना।
1: अच्छा जी।
2: बताइए।
1: और सब बढ़िया है?
2: धूप निकला है उधर?
1: जी धूप है, लेकिन मतलब उतना नहीं लग रहा है, बढ़िया है मौसम।
2: हवा भी है
1: जी।
2: तो मैं गाना सुनना है।
1: बताएं क्या फरमाइश है?
2: नीलकमल सिंह का बेवफाई सॉन्ग बजा दीजिए।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
2: तो सबसे पहले तो सोनी मैम को
1: जी,
2: आपको और करिश्मा को।
1: ओके,
2: पूरा रेडियो रिमझिम को।
1: ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी, मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्रामदेव चोपड़ा, जिला कुशनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम। आप कौन मैम बोल रहे?
0: नहीं, मेरा नाम भारती है। जी
1: जी, मैं बहुत बड़ा लिसनर हूँ आपका।
0: गोपालगंज
1: और सब बताइए, गोपालगंज में कैसा मौसम बना है आज?
0: में मौसम अभी बढ़िया है,
1: चलिए मैम, अच्छा है।
0: और उधर का मौसम कैसा है?
1: हमारे अभी आपके छोटे जिले से ही है तो अच्छा ही है, वैसा ही मौसम इधर भी है, कुशीनगर से हम भी है।
0: अच्छा जी, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
1: मुझे गाना सुना दीजिए, मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, यही गाना सुना दीजिए।
0: ओके, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: डेडिकेट रहे आपको और पूरे निम परिवार को और जितने भी श्रोता है निम परिवार को, सुनने वाले सभी के लिए।
0: ओके चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रुमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghante bajte hai to kehte hain hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्ते मैम।
6: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
5: हम थारा से बोलते हैं, मेरा हमारी प्रसाद।
6: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
5: हम ठीक है, आज हवा बहुत बहुत आ।
6: मौसम बढ़िया है। बताइए कौन सा गाना सुनना है?
5: प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा।
6: अच्छा ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: नमस्ते।
6: नमस्ते।

0: हेलो, बहुत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। जी, क्या नाम है आपका
1: मिसबा
0: और कहाँ से हैं आप?
1: सागर से। ठीक
0: अच्छा जी, कैसी हैं आप?
1: है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ जी। बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: तुमसे बेहतर कौन है?
0: सॉन्ग और ये गाना किसी को सुनाना चाहती हैं
1: हाँ,
0: जी? बताएं। अच्छा
1: मेरे हस्बैंड।
0: जी, चलिए फिर बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीन के कार्यक्रम चॉइस में।
6: नमस्ते दीदी
5: जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
6: कविता
5: जी। कहाँ से हैं आप?
6: दिल्ली से
5: जी। कैसी हैं?
6: हमारे पति देव फोन ना चले रही है
5: जी।
6: हाँ, उमा शंकर मिश्रा
5: जी। जी किए थे। आप ठीक है ना?
6: हाँ।
5: चलिए बताइए,
6: सुना दीजिए।
5: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
6: अपने पसंद के सुना दीजिए।
5: मेरी पसंद का? आप अपनी पसंद का नहीं सुनिएगा?
6: नहीं, अपनी पसंद से सुना
5: जी। बताइए, भोजपुरी सुनना चाहेंगी या फिर हिंदी?
6: खेसारी लाल के।
5: ओके, और ये गाना आप किस किस को डेडिकेट करना चाहती हैं?
6: हमारे पति देव है, मेरा देवर है, मेरा लड़का फड़का है।
5: अच्छा जी।
6: हाँ।
5: ओके
6: ओके,
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ठीक है जी।

0: हेलो अपना रेडियो रेमझिम भाई
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमझिम के कार्यक्रम हेलो मैच में।
0: आप ही गोपालगंज तो बोल दो भाई। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल भाई सोनी बेटा,
1: सत श्री अकाल
0: भाई। पिंड मौड़कुर जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलना भाई।
1: जी कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक बेटा, तुसी दसो भाई, छोटी सेहत भाई, घर परिवार कैसे सुखा?
1: क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश बेटा, एक पुरानी फिल्म है
1: जी
0: वो हैगा जी फिल्म, एक मिनट दसता हूँ, भूल गया बेटा। अखियों के चरोखे में टाइटल सॉन्ग है बेटा, अखियों के चरोखे में, एक ही सुना दो भाई।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: ए बेटा, मेरे मानयोग बड़े भाई है सुखपाल सिंह, नेशनल कॉलोनी बठिंडा, जथेदार बापू प्यारा सिंह जी,
1: जी
0: अपने मलकीत सिंह घड़ीसाज, एक मेरे बड़े भाई है प्रगट सिंह ढिल्लों साहब, सोनू सत श्री अकाल बुलाते हैं बेटा।
1: जी गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल भाई, बाबा नाल कोला करे भाई, सत श्री अकाल भाई।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: गुड मॉर्निंग मैम।
6: गुड मॉर्निंग,
5: आपका क्या नाम हुआ मैम?
6: मेरा नाम भारती है।
5: जी जी जी।
6: और आपका?
5: थैंक यू मैम, मैं शंकर प्रसाद गुप्ता गया जी से बोल रहा हूँ मैम।
6: जी
5: जी,
6: कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है, आपके आशीर्वाद है। मैम एक गाना सुन रहा था।
6: जी बताएं, कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
5: ये हम आपके है कौन में कंताश्रिय मैम, वो सॉन्ग सुन रहा था मैम।
6: हाँ हाँ,
5: वो सुन रहा था मैम।
6: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
5: पहले तो मैम आपको सुनाएंगे, सबसे पहले आप जुड़ेंगे।
6: हाँ जी, जी।
5: और उसके बाद हमारी बिटिया है, नाती है, पोता है, बहू है, बेटे है, सबको सुनाएंगे मैम और सारे लिस्नर को सुनाएंगे मैम।
6: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
1: जी
0: भाई ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: जी
0: जी मैम, तो आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म राजा हिंदुस्तानी का, और गाने को बोले तेरे इश्क में नाचेंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंजिंग दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: ओके फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो।
0: ओके मैम, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: मेरा नाम मैडम।
2: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: हम तक भुला गई नहीं?
2: नहीं, बिल्कुल याद है। आपका नाम प्रीति है ना?
3: हाँ, मेरा नाम प्रीति है।
2: फिर बताएं कैसी हैं प्रीति जी?
3: हम ठीक बनी।
2: फिर बताएं क्या होता?
3: कुछ ना, अब ये खाना खा के बैठल बनी। रुआ खाना खानी है?
2: हाँ, कहीं कौन सा गाना सुने रुआ?
3: रावर का नाम हो
2: भारती।
3: रवजी बड़ा नीमन रहा मैडम।
2: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
3: पिया छोड़ दी ही ना।
2: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
3: आपको, बस आपको।
2: जी बिल्कुल,
3: आप सुन लीजिएगा।
2: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रो बहुत शुक्रिया मैडम।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम है ना एक्सप्रेस में।
1: जी मैं उमा शंकर दिल्ली से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से। ठीक है, अपना सुनाइए।
0: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है?
1: भारती जी बोल रहे हैं ना?
0: जी।
1: सुपर उत्तम फिल्म का ये चांद कोई दीवाना है,
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: और मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, साथ में काम करने वाला है, वो सब कुछ सुनता है।
0: ओके,
1: और आपको भी सुनाना है, हमें भी सुनना है।
0: जी बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो।
5: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: सलाम मैडम
4: जी,
5: मनोज कुमार बोल रहे हैं।
4: हाँ हाँ,
5: हमको गाना सुना दीजिए आया सावन झूम के।
4: जी
5: तो यहाँ बारिश हो रहा है, आज लेट से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ ना मैडम।
4: जी, बारिश की वजह से थोड़ा हम भी लेट हो गए।
5: इसलिए लगा रहे थे, मैं लग रहा था।
4: जी, और बताएं ये गाना किसी को डेडिकेटेड है?
5: डेडिकेट सरिता कुमारी को और आपको और रेडियो जिन के सारे श्रोताओं के लिए है ये गाना।
4: जी, और सब बढ़िया है ना?
5: बारिश अभी हो रही है हमारे यहाँ।
4: जी, तो मौसम तो ठंडा हो गया होगा।
5: हाँ, एकदम ठंडा यहाँ तो, ठंडे है 3 दिन से।
4: हाँ,
5: ना ज्यादा गर्मी नहीं है यहाँ।
4: तब तो बढ़िया है।
5: हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग पूरा इधर देहात में है ना, मुंगेर जिला।
4: कोई गांव में बहुत ठंडा रहता है, हल्का, उतना गर्मी नहीं पड़ता है।
5: यहाँ गाछ कुछ ज्यादा है ना, आम का बगीचा बहुत ज्यादा है। हम लोग को धूप लगता है तो गाछ के पास चल जाते हैं।
4: चलिए फिर ठीक है, सॉन्ग प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: थैंक यू। और आपको पहले नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया, आपने बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा है अभी?
0: अभी काम पे हैं।
1: अच्छा, कौन सा काम?
0: वही केमिस्ट का काम करते हैं।
1: अच्छा, याद आ गया।
0: कह रहे हैं कि आज का फरमाइश है,
1: बताएं क्या फरमाइश है।
0: लता जी का गाना है, एक गाने का नाम जो है ना वो है अरे अभी दिमाग पे था, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: सभी लोगों को, सब लोग सुनेंगे आपके साथ, आपको तो प्ले करना है, साथ में आप ही सुनिएगा।
1: जी चलिए फिर, ठीक है, सॉन्ग प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रूम
0: नाम
1: की कॉल
0: नाम
1: करने
0: नाम
1: से।
0: नहीं पूछी मेरा।
1: जी ऐसे ही आपको पहचान गए।
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
1: जी, चलिए फिर ठीक है, रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
6: मैं रुद्र बोल रहा हूँ।
5: कहाँ से?
6: भिंडवा से।
5: जी, क्या हाल है?
6: ठीक है।
5: क्या करते हैं आप?
6: पढ़ता हूँ।
5: कौन से क्लास में?
6: अब गया 5th में।
5: 5th में है तो पढ़ाई अच्छी चल रही है।
6: हाँ।
5: ये बढ़िया है। फिर बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
6: आज रात मजा वाला।
5: कौन सा सॉन्ग?
6: आज की रात मजा गुमशाम।
5: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
6: सबसे पहले आपको।
5: जी,
6: लोग रेडियो रिंगिंग सुन रहे हैं उनको।
5: ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: मैम बोल रही है?
5: नहीं।
6: वैसे आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम भारती है।
6: ठीक है।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत
0: जी,
1: स्वागत है
0: नमस्ते
1: आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी, नमस्ते। क्या
1: नमस्ते,
0: हाल खबर?
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं। क्या
0: ठीक तो है, बारिश
1: नाम? जी
0: तो हुआ?
1: जी बारिश हो रहा है इधर।
0: जी, पानी तो बहुत हुआ।
1: मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हुआ है जिसके
0: मैं
1: कारण।
0: बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैं पचकरा से बुराई बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं, और सब बढ़िया है ना?
0: सब बढ़िया है।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना है आपको? अच्छा
0: गाना सुनना है, मलमास चल रहा है ना, शिव शंकर जी का गाना बजा दीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम का।
1: ओके।
0: जी,
1: और
0: मेरी गाना को प्रभावित है जी।
1: ये गाना किसको सुनाना है?
0: सुनाना है हमको, सुनना ही है आपको, सुनना ही है। जितना इसमें जो रेडियो रेंज में जुड़े हैं सभी लोग सुनेंगे।
1: जी
0: किसको
1: बिल्कुल,
0: किसको हम नाम रखे? नाम इतना रखने तो याद नहीं पड़ेगा।
1: कोई नहीं, जो याद है उन्हें ही बता दे।
0: अब वो सही रहने दीजिए संक्षेप में।
1: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर ठीक
0: जी,
1: है। जी
0: रिकॉर्डिंग बहुत लेट से चालू हुआ है। जी
1: क्योंकि बारिश हो रहा था तो मैं भी लेटी से आई यहाँ।
0: जी ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ठीक
1: चलिए फिर ठीक
0: है।
1: है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
0: जी
1: रेडियो
0: जी
1: रंजन में
0: जी
1: कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी नमस्ते।
4: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: जी
4: कैसे हैं आप?
3: ठीक है, आप बताइए।
4: मैं भी ठीक हूँ।

0: की बरसा पानी
1: सॉन्ग
0: जी,
1: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना है?
0: अमन असीर सॉन्ग। उधर बारिश हुआ कि नहीं आज?
1: आज बारिश हुआ है इधर भी।
0: इधर भी हुआ है,
1: मौसम तो ठंडा है।
0: जी जी, अगर पीप की बरसते है पानी।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ सब बढ़िया है।
1: चलिए फिर ठीक है, सॉन्ग प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार के इस पावन

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:14 तथा सूर्यास्त शाम 6:46 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। सच्ची प्रगति वही है जो निरंतर सीखने और लगातार प्रयास करने से प्राप्त होती है। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं। एक नई उम्मीद, एक नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आइए शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा इस मधुरमय भक्ति गीत के साथ।

नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल